0: yoga adds life to your ears and ears to your life. Radio Masti 24/7 Live wishes all our listeners happy International Day of Yoga.
1: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
2: इट्स द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। हैव अ मस्ती भरा वीकेंड।

0: इफ वीकेंड वॉज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वॉज अ गर्ल, इफ वीकेंड वॉज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वॉज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Just

0: the future. Exhale the past. Radio Masti 24/7 Live wishes all our listeners happy International Day of Yoga. और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
1: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
2: Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
3: It's the best of Bollywood playing on Radio Musti 24/7 live. Have a Musti bhara weekend.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Josh

0: Yoga, it's not about touching your toes. It's about what you learn on the way down. Radio Masti 24/7 Live wishes all our listeners happy International Day of Yoga.
1: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें। समोसा पैटीज, फूटी, लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, Masti 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Masti 24/7 Live.
2: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 Live. Have a masti bhara weekend.

0: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है। ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है।
1: मुझे चांद पे ले चलो।
0: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
1: रात अकेली है।
0: द परफेक्ट रेसिपी फॉर यू टू अनवाइंड मस्ती वीकेंड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: एक इटालियन फिल्म है, लाइफ इज ब्यूटिफुल। जर्मन नाजी कैंप में एक पिता अपने बेटे के लिए आसपास मौजूद मौत से जिंदगी के सपने बनाता है और टुकड़ा टुकड़ा कर अपने बेटे को तोहफे के तौर पर देता रहता है। उसे महसूस नहीं होने देता कि किसी रोज मृत्यु उनको दबोचने आएगी। एक रोज पूरी की पूरी मौत खुद रखकर उसे पूरी की पूरी जिंदगी दे देता है। आखिरी रील में बच्चे के चेहरे पर एक ना खत्म होने वाली मुस्कान होती है, एक सच हो चुका सपना होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत स्वागत स्वागत। केम छे सिंगापुर सारू छे अक्का सिंगापुर मारू छे। मैं हूं आपका समर रेडियो 24/7 लाइव पर। आप मुझे सुन रहे हैं मस्ती गीत माला में। आप सोच रहे होंगे कि आज की मस्ती गीत माला की ये ऐसी इमोशनल शुरुआत मैंने क्यों की। समझ जाएंगे आप, फादर्स डे स्पेशल शो है आज का हमारा ये। देखिए, हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, फिल्मों में हमने कई कहानियां कही हैं जो पिताओं के लिए ही लिखी गई। मगर इतनी कहानियों में होने के बावजूद भी पिता कोई खामोश दास्तान है, जैसे जिसे कहने के लिए कोई दास्तान गो नहीं। शायद मैं भी ना कह पाऊं। पिता आपका वो आंसू है जो आंख में भर तो आया पर कभी गिरा नहीं। वो मुस्कान है जो कभी थकी नहीं। वो बेवक्त की चीख चिल्लाहट नहीं, एक लम्हे की रौबदार आवाज है। दुख में वो कड़वी एलोपैथी की दवा नहीं, मीठी होम्योपैथी की गोलियां हैं। सुख में वो किसी मल्टीविटामिन से कम नहीं। वो रेखा गणित की कॉपी है, एक पन्ना रेखाओं से भरा हुआ, एक खाली। पिता नंबर लॉक वाली कोई अटैची है, एक ऐसा फोल्डर है जिसमें परिवार के पासपोर्ट और आधार कार्ड रखे होते, सारे डॉक्यूमेंट्स रखे होते। पिता चश्मा है, पिता अखबार है, पिता ही आपका रविवार है। तो आज का मस्ती गीत माला हम पिताओं को ही समर्पित कर रहे हैं। मतलब एक और सफर हम शुरू करने वाले हैं और ये सफर इस बार हम पापा के कंधों पर सवार होकर करने वाले हैं। यानी आज हम बात करेंगे फादर्स की, स्पेशली बॉलीवुड के कुछ पिताओं की जिन्होंने एक बढ़िया मिसाल पेश की, न सिर्फ अपने परिवार के लिए बल्कि तमाम सोसाइटी के लिए, और अपने बच्चों के लिए जिंदगी की राहें खोल दी उन्होंने। तो सबसे पहले एक बढ़िया वाला गाना सुन लेते हैं, मेरा और आपका सबका पसंदीदा गाना। ये आई एम श्योर कि आपको ये बहुत पसंद होगा, मुझे बहुत बहुत और बहुत अच्छा लगता है, कभी भी सुनवा लीजिए। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, और मुझे लगता है कि इस गाने को उदित नारायण साहब के अलावा कोई और गा ही नहीं सकता। मैं सोच भी नहीं सकता, कोई गाता भी है तो वो उदित नारायण के आसपास पहुंच भी नहीं पाता। तो आनंद मिलिंद मजरू सुल्तानपुरी और उदित नारायण साहब को सलाम ठोकते हुए शुरू करते हैं आज का हम ये बेहद खूबसूरत सफर। आप भी अपने किस्से जो पिता से रिलेटेड हो हमसे जरूर शेयर कीजिएगा हमारे फेसबुक पेज पर आकर। मैं इंतजार करूंगा। समर है मेरा नाम, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आपको एंटरटेन करना है मेरा काम। आई डोंट नो मैं कितना सक्सेसफुल हूं, लेकिन मैं आपके साथ रहता हूं तो मेरा दिल प्यार से भरा रहता है। मेरे लिए तो इतना ही काफी है।
1: दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: होशियार।
1: सभी रिश्ता जब नया होता है ना, एक्साइटिंग होता है, क्योंकि वो नया होता है।
2: दोस्ती,
3: दोस्ती की कोई वैल्यू नहीं है ना तुझे,
4: उतने अच्छे दोस्त भी नहीं है।
2: डिजायर,
1: पर जब प्यार दोस्ती बन जाता है और दोस्ती में प्यार का रंग मिल जाता है, तो इससे बचने का एक ही सोल्यूशन है।
2: Some relationships are tested, some are transformed.
5: Maa, dulhan ke liye makeup.
2: Shahid Kapoor, Kriti Sanon and Rashmika Mandanna starrer Cocktail 2. Releasing island-wide on 19th June at the cinemas near you. Brought to you by Vision Discs Singapore.
6: Are you ready?
7: Are you ready?
8: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: son's first hero and a daughter's first love. Radio Masti 24/7 wishes all the daddies a very happy Father's Day.
1: वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है। आप मेरे यानी समर के साथ सुन रहे हैं मस्ती गीत माला रेडियो मस्ती 24/7 लाइव बढ़िया साउथ ईस्ट एशिया और सिंगापुर का खास तौर से एकमात्र लाइव हिंदी बॉलीवुड रेडियो सिंस 2009। और आज हम पिताओं को डेडिकेट कर रहे हैं अपना ये मस्ती गीत माला। पिता ज्यादातर बच्चों के लिए एक आइडियल होते हैं, एक रोल मॉडल, कहीं ना कहीं वो उन्हें प्रभावित करते ही हैं। और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से बेहतर क्या मिसाल होगी, जिन्होंने इलाहाबाद की नैनी जेल से अपनी बेटी इंदिरा को जन्मदिन के तोहफे के तौर पर चिट्ठियां लिखी। इन खतों में आदमियत का एक बेहद खास सबक मिलेगा। एक अंश आपको सुनाता हूं जिसे मुंशी प्रेमचंद ने ट्रांसलेट किया। मुंशी प्रेमचंद बहुत अच्छे राइटर रहे हैं, आई गेस पुराने सभी लोग उन्हें जानते होंगे। तो सुनिए उन्होंने क्या लिखा। नीचे दर्जे के जानवरों में मछलियां अंडे देकर उन्हें छोड़ देती हैं। वो एक साथ हजारों अंडे देती है लेकिन उनकी बिल्कुल परवाह नहीं करती। माँ बच्चों की बिल्कुल खबर नहीं लेती, वो अंडों को छोड़ देती है और उनके पास कभी नहीं आती। लेकिन ऊंचे दर्जे के जानवरों को देखो तो मालूम होगा कि उनके अंडे या बच्चे कम होते हैं, लेकिन वे उनकी खूब हिफाजत करते हैं। मुर्गी अंडे देती है, उन पर बैठती है और उन्हें सेती है। जब बच्चे निकल आते हैं तो वो कई दिन तक उन्हें चुगाती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब माँ उनकी फिक्र छोड़ देती है। अब तुमको ये भी मालूम हो गया है कि जानवर ज्यों ज्यों तरक्की करते हैं वो अंडे नहीं देते बल्कि अपनी सूरत के पूरे बने बच्चे जनते हैं जो सिर्फ कुछ छोटे होते हैं। ऊंचे दर्जे के जानवर आमतौर से एक बार में एक ही बच्चा देते हैं। तुमको ये भी मालूम होगा कि ऊंचे दर्जे के जानवरों को अपने बच्चों से थोड़ा बहुत प्रेम होता है। आदमी सबसे ऊंचे दर्जे का जानवर है, इसलिए माँ और बाप अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और उनकी हिफाजत करते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हम सब ऊंचे दर्जे के जानवर हैं और एक फैमिली में रहते हैं जहां बहुत सारा प्यार होता है और पिता हमारे लिए बेशकीमती होते हैं। तो बॉलीवुड के ऐसे पिताओं की कहानी कहेंगे आज, मगर एक छोटे से ब्रेक के पार। और उससे पहले एक बेहद खूबसूरत गाना फिल्म राजी से इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को समर्पित। आपको बता दूं कि इंदिरा जी कहती थी कि अगर वो पॉलिटिक्स में नहीं होती तो वो फिल्मों में होती। चलिए सुनते हैं ये गाने और फिर लौट कर आते हैं बॉलीवुड के पिताओं की कहानी मैं कहूंगा आज आपसे। और अगर आप अपनी कहानी कहना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज पर आकर जरूर कहिए।

0: It's World Music Day.
1: Mengapa masih lagi ku berdiri ku menunggu cintamu?
0: Let's celebrate music, the universal language of mankind.
2: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.
3: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
4: हाँ जी जी,
3: 1/2 kg मसूर दाल,
4: जी जी,
3: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
4: जी जी,
3: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
4: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
3: क्या जी?
4: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर. जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोर स्टेप.
3: वाजी, क्या बात जी.
4: Order today from GG Mart, your personal grocer.
0: ये रात तो अपनी है, पर एक ख्याल किसका है?
5: तुमको लेकर
0: ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है?
5: मुझे चांद पे ले चलो.
0: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है. बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे. ट्यून इन टू
5: रात अकेली है.
6: जोश में रहो.
7: अ सन्स फर्स्ट हीरो एंड अ डॉटर्स फर्स्ट लव.
5: मेरे पापा.
7: रेडियो मस्ती 24/7 विशेस ऑल द डैडीज अ वेरी हैप्पी फादर्स डे.
6: जोश में रहो.
4: नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव की ये महफिल है, नाम है जिसका मस्ती गीत माला, जो आज पिताओं को समर्पित है. पिता कितना जरूरी होता है, ये बात आप तब समझ सकते हैं जब वो आपके सपनों में आपके साथ हो. आप अपना सपना पूरा करने की राह पर जाना चाहें तो वो आपको रोके नहीं, बल्कि उस राह पर जाने का हौसला दे. इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एक सशक्त अभिनेता हैं मनोज बाजपेयी जी. वो कहते हैं कि उन्होंने अपने सपने अपने पिताजी से कह दिए थे. पिता ने उन सपनों को कुचला नहीं, बल्कि उन सपनों के लिए पंख सिल दिए ताकि वो दूर तक उड़ सकें, ऊंचे उड़ सकें. वो बिहार के एक छोटे से गांव से दिल्ली चले आए और दिल्ली से मुंबई, क्योंकि उनकी पीठ के पीछे पिता का मजबूत कांधा था जो उनके पीछे आती हर मुसीबत के लिए ढाल बना था. पिता जो अपने बच्चों को कर्ज के रुपयों से पढ़ाता था, उसने अपने बच्चों को सपने पूरे करने की इजाजत भी दे दी. उन्होंने ही सिखाया था कि सपनों को कभी मरने मत दो. इसीलिए मनोज बाजपेयी जी ने अपने सपनों को बचाया. आज बड़े होने पर भी अपने सपनों के लिए वो चल रहे हैं. जब उनके पिता छोटे थे तो डॉक्टर बनना चाहते थे, मगर उनका सपना पूरा नहीं हुआ. इसलिए उन्होंने ठान लिया कि अपने बच्चों के सपने पूरा करने के लिए जो भी वो कर सकेंगे करेंगे. उन्होंने बहुत सारा लोन ले रखा था ताकि बच्चों के सपनों की राह में पैसों की तंगी ना आए. एक दफा छुटपन में मनोज बाजपेयी जी ने देखा कि कोई आदमी घर पर आया है और पिताजी नहीं चाहते थे कि बच्चों को मालूम हो कि वो कौन है. लेकिन मनोज बाजपेयी जी को पता लग गया कि ये लोन की रिकवरी करने वाला आदमी है, तो मनोज जी ने खुद उनको उस आदमी से छिपाया. अच्छा, उनके पिताजी को फिल्में देखने का बहुत शौक था. वो उन्हें नजदीक के शहर बेतिया ले जाते थे, तो ये जाहिर था कि मनोज जी के अंदर भी फिल्में देखने का शौक और उनमें काम करने का सपना यहीं से जन्मा होगा. ये होता है पिता का प्रभाव. और भी कुछ ऐसे पिताओं की बात करेंगे, पर एक छोटे से ब्रेक के बाद. गाना अकेले हम अकेले तुम से, आई लव यू डैडी. और आप कुछ कहना चाहते हैं ऐसा ही तो आकर जरूर कहिए हमारे फेसबुक पेज पर, मैं इंतजार कर रहा हूँ. मेरा नाम है समर. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं मस्ती गीत माला.

0: guns don't kill people. No, no, no, no. Dads with pretty daughters, they definitely kill people.
1: Radio Masti 24/7 wishes all the daddies a very happy Father's Day. Josh mein raho.
2: हाँ जी नमस्कार, वेलकम बैक। ब्रेक के इस पार समर फिर से कर रहा है आपका स्वागत, दोनों बाहें फैलाकर। अब मैं बॉलीवुड के एक ऐसे फादर एंड सन की जोड़ी की बात करने जा रहा हूँ जो हालात के चलते एक दूसरे से अलग रहे। बच्चा अपने पिता से खफा भी रहा मगर उनसे खूब प्यार भी करता रहा। वो बच्चा ऐसा था जो अपने पिता के साथ शहर दर शहर ट्रेवल किया करता था, क्योंकि उसके पिताजी एक फिल्मी कलाकार और मंच के अभिनेता भी थे, थिएटर किया करते थे। तो जब भी पिता की दूसरे किसी शहर में शूटिंग होती तो वो उनके साथ साथ रहते और स्टेज परफॉर्मेंसेस के दौरान भी स्टैंड बाय आर्टिस्ट के तौर पर हमेशा खड़े रहते। जब भी कोई एक्टर बीमार हो जाता या किसी को कोई दिक्कत होती, कोई परेशानी होती, तो नकली मूछें लगाकर स्टेज पर भेज दिया जाता उन्हें, चाहे डायलॉग याद हो या ना हो। जानते हैं बच्चा कौन था? ये थे परीक्षित साहनी। और जानते हैं इनके पिता कौन थे? बताने की जरूरत नहीं है। लेजेंडरी एक्टर बलराज साहनी साहब, मशहूर फिल्म कलाकार। हालांकि बलराज साहनी साहब की पत्नी की परीक्षित साहनी के बचपन में ही डेथ हो गई थी, तो उनकी माँ का साया उनके साथ नहीं था और इसी वजह से उन्हें अपने पिता से भी दूर रहना पड़ा। अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास तो कभी बोर्डिंग स्कूल में, फिर वो डायरेक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग और एडिटिंग का कोर्स करने रूस चले गए। उसके बाद बलराज साहनी साहब के पास रहने को चले आए, मगर तब तक पिता और बेटे में बहुत दूरियां बन चुकी थीं। हालांकि बलराज जी के पास तब पैसा था, रुतबा था, उन्होंने अपने बेटे के लिए अपने घर में अच्छा कमरा बनवाया था, एक स्पेशल रूम जहां वो पेंट कर सकें, डार्क रूम भी था जहां वो अपने फोटोज डेवलप कर सकें, एक बहुत बड़ी बैल्कनी जहां वो जिम कर सके। बलराज साहनी उनसे कहते थे कि मेरे साथ दोस्ती रखो यार, डोंट ट्रीट मी लाइक योर फादर, क्योंकि परीक्षित साहनी उनसे बात नहीं करते थे। मगर पिता के भीतर जो कलाकार था वो उनके भीतर भी कहीं ना कहीं था ही। तभी तो उन्होंने फिल्म की अनोखी रात और इसके बाद फिल्म बनाई भी, पवित्र पापी। लेकिन ये बात है कि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि उनको बलराज जी के बराबर का एक्टर बनना है, क्योंकि वो मानते थे कि वो कभी उनकी तुलना नहीं कर सकते, उनके बराबर नहीं पहुंच सकते। उन्होंने कहा भी था एक दफा कि इट्स बेटर टू बी अ फर्स्ट रेट परीक्षित देन अ थर्ड रेट बलराज। बलराज जी ने भी कभी नहीं चाहा कि वो एक्टर ही बने, न प्रेशर डाला किसी भी तरह का। मैं ये कहूंगा कि प्यार तो पिता पुत्र के बीच यहाँ भी था मगर थोड़ा सा अनबोला। ये बात अलग है कि बचपन में अपने पिता की शूटिंग के दौरान एक सीन पर फूट फूट कर वो रो पड़े, क्योंकि शूटिंग देखने आई भीड़ उनके पिता पर बहुत ही खराब कमेंट्स कर रही थी। बलराज साहनी कम्युनिस्ट थे तो उनका विरोध हुआ करता था। खैर साहब, जो भी हो, फादर और सन के रिलेशन में अगर कुछ अनकहा हो तब भी प्यार तो होता ही है, रिश्ता तो यही है, रिश्ते प्यार से बनते हैं। तो चलिए इसी बात पर आपको और हमारा ये रिश्ता यूं ही कायम रहे, ये प्यार यूं ही बना रहे, इन बेहतरीन गानों को आपके सामने पेश कर देते हैं। इन्हें सुन लीजिए और वापस लौट कर जरूर आइएगा। कुछ अपने पिताजी के बारे में कहना चाहें तो जरूर कहिए। आज हमारा फेसबुक पेज लोडेड है इस तरह के मैसेजेस से, इंतजार रहेगा आपके मैसेज का भी।

हेलो जी नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस्तकबाल ब्रेक के इस पार्ट ढेर सारी और बातों के साथ हाजिर हूँ मैं समर। अच्छा, अगर हम बॉलीवुड में जिन जिन कलाकारों ने पिता की भूमिका निभाई उनमें कुछ खास कैरेक्टर्स की बात करें तो आपको कौन सा किरदार अच्छा लगता है या कौन सा याद रह जाता है या आपको लगता है कि यार ऐसे होने चाहिए पापा। अगर मेरी बात करें तो मुझे दो रोल बहुत अच्छे लगते हैं पिता के किरदार के। एक तो है दिल है कि मानता नहीं के फिल्म वाले डैडी, पूजा भट्ट के डैड, और दूसरा फिल्म डैडी वाले डैडी। और सबसे बड़ी बात ये दोनों ही किरदार एक ही कलाकार ने निभाए और वो है अनुपम खेर। अच्छा यही नहीं, अनुपम खेर का वो रोल कैसे भूल सकते हैं हम, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाला। देखा जाए तो ही इज मच लव्ड डैड, हम आपके हैं कौन, विवाह कुछ कुछ होता है और फिल्म क्या कहना के डैडी। मुझे लगता है कि इंडस्ट्री की माँ अगर निरूपा रॉय हैं तो पिता अनुपम खेर को बना देना चाहिए। अनुपम खेर एक बेहद शानदार पिता हैं भी रियल लाइफ में, उनके बेटे हैं सिकंदर खेर, हालांकि वो भी एक्टर हैं लेकिन अनुपम खेर उनके बायोलॉजिकल फादर नहीं है। लेकिन सिकंदर के अनुसार अनुपम इज बेस्ट डैड, अनुपम जी के लिए सिकंदर इज बेस्ट सन। और सिकंदर जी की माँ किरण खेर जी के अनुसार अनुपम जी के अलावा अगर कोई और होता तो वो सिकंदर को संभाल नहीं पाता। जब किरण जी ने अनुपम जी से शादी की तब सिकंदर सिर्फ 3 साल के थे, बहुत ही रेबेलियस बच्चे, फन लविंग थे, सिकंदर के लिए तो बहुत ही कोमल मिजाज के पिता। हालांकि उन्होंने बहुत ज्यादा वक्त नहीं दिया कभी, मगर जरूरत पड़ने पर एक स्ट्रॉन्ग फादर के तौर पर खड़े रहे उनके साथ। सो यहाँ वो भी एक बहुत अच्छा डैड बनते हैं। कहने को दुनिया उनको स्टेप फादर कहती है, पर दुनिया का क्या, कहती है तो कहती रहे। सो बेस्ट डैड अवार्ड गोज टू अनुपम खेर। उनके लिए गाना डेडिकेट कर देते हैं, सुनिए मासूम से तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं। और अगर आप भी मुझसे हैरान हैं, परेशान हैं या कुछ भी कहना चाहते हैं इस शो के बारे में तो जरूर कहिएगा हमारे फेसबुक पेज पर आकर। और सुनते रहिएगा रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर फादर स्पेशल मस्ती गीतमाला।

वेलकम बैक, मैं हूं एक बार फिर से आपका दोनों बाहें फैलाकर स्वागत करता हूं समर रेडियो मसी 24/7 लाइव के स्टूडियो से। वैसे एक बात तो है, पिता जो भी सिखाते हैं उसे सिखाने का तरीका बहुत ही जुदा होता है, अलहदा होता है, समय से परे सीख दे देता है। एक वाक्य मुझे यहाँ पर याद आ रहा है। पापा मुझे हॉस्टल में छोड़ने के लिए ट्रेन से जा रहे थे। पैसेंजर्स में से किसी एक ने मैथ्स की एक रिडल सॉल्व करने को दी। पापा ने उसे चंद पलों में कर दिया। इतने में हमारा स्टेशन आ गया, हम लोग उतर गए। 5-6 रोज बाद मेरे नाम मेरे पापा की चिट्ठी आई। मैं हॉस्टल में था ना, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि ट्रेन में पूछे गए सवाल को इन तरीकों से भी हल किया जा सकता है। वहाँ 6-7 तरीके लिखे हुए थे। मैं आंखें और मुंह फाड़े कभी चिट्ठी को कभी कमरे की छत को देखता रह गया। हमारे पिताजी इतने खतरनाक मैथमेटिशियन हैं कि हमको मालूम ही नहीं पड़ा उनके बारे में। अच्छा, हम ब्रेक पर जाने से पहले बॉलीवुड के उन फिल्मी पिताजियों की बात कर रहे थे जिनके किरदार भुलाए नहीं भूलते हैं हमें। अमरीश पुरी साहब को कोई कैसे भूल सकता है। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, क्या सही किरदार था। और संस्कारी बापू आलोकनाथ जी, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, मैंने प्यार किया, विवाह। और फिर अमिताभ बच्चन, कभी खुशी कभी गम के पिताजी, हार्ट टू ब्रेक। अमिताभ बच्चन साहब के रियल लाइफ सन अभिषेक बच्चन एज हिज फादर इन फिल्म पा, कितना अच्छा रोल निभाया है। और अमित जी के रियल लाइफ सन शाहरुख खान खुद एक बहुत बढ़िया डैड बने, एकदम कूल डैड। जब मैंने ये फिल्म देखी थी तो सोचा था कि इतने कूल और यंग डैड भी होते हैं क्या। अच्छा चलिए, इसी बात पर आपको एक गाना सुना देते हैं, हानिकारक बापू फ्रॉम दंगल। और हाँ, इस फिल्म में जो आमिर खान ने डैड का किरदार किया है उसे भी भुलाया नहीं जा सकता। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले डैडी जो अपनी बेटी को जिताने को जितनी भी मेहनत चाहिए करने के लिए तैयार हैं, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, उसे गोल जिताना है तो जिताना है, उसके टारगेट तक उसे पहुंचाना है, उसका गोल अचीव करवाना है। तो चलिए सुनते हैं, फिर मिलेंगे ब्रेक के उस पार। अभी दो और डैडी की हम करेंगे बात।

0: फिर भी रिश्ता जब नया होता है ना एक्साइटिंग होता है क्योंकि वो नया होता है।
1: दोस्ती
2: दोस्ती की कोई वैल्यू नहीं है ना तुझे
3: उतने अच्छे दोस्त भी नहीं
1: है।
0: और जब प्यार दोस्ती बन जाता है और दोस्ती में प्यार का रंग मिल जाता है तो इससे बचने का एक ही सोल्यूशन है।
1: Some relationships are tested, some are transformed.
4: Maa dulhan ke liye makeup.
1: Shahid Kapoor, Kriti Sanon and Rashmika Mandanna starrer Cocktail 2. Releasing island-wide on 19th June at the cinemas near you. Brought to you by Vision Discs Singapore. Singapore, prepared for impact.
5: 3, 2, 1.
6: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Lion Challenge. City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: a son's first hero and a daughter's first love. Radio Masti 24/7 wishes all the daddies a very happy Father's Day. Josh Mehra.
1: यहाँ बॉलीवुड किरदारों में से जिन दो और किरदारों की बात मैं कर रहा हूँ उनमें से एक है चिकनी चुपड़ी चाची। वेलकम बैक, मैं हूँ समर रेडियो में 24/7 लाइव पर फादर स्पेशल गीत माला लेकर हाजिर हूँ। कमल हासन जो अपनी बेटी से मिलने के लिए चाची यानी औरत का वेश बनाकर उसके नाना के घर पहुँच जाते हैं, फिर जो कमाल की चीजें होती हैं और धमाल होता है वो बेमिसाल है। अच्छा, फिल्म बहुत अच्छी है, अगर नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। और दूसरा है फारूक शेख, फिल्म ये जवानी है दीवानी के कूलेस्ट डैड। और अगर आपको भी कोई और किरदार याद आ रहा हो तो जरूर हमें बताइएगा, आप हमारे फेसबुक पेज पर आकर अपनी तमाम बातें हमसे शेयर कर सकते हैं। वेल, अभी मैं आपको एक बेहद भोला सा वाकया सुनाता हूँ। एक कतार है टेढ़ी मेढ़ी, बहुत मासूम कतार, कोई नाक खुजा रहा है, कोई बालों में हाथ फिरा रहा है, किसी की स्कूल की यूनिफॉर्म की शर्ट निकर से बाहर निकल आई है, किसी ने मुंह फुलाया हुआ है, कोई खिलखिलाता है, कोई कानापूसी करता है। जगह है बॉम्बे का जान की कुटीर, बापू यानी महात्मा गांधी इन सब से मिलने वाले हैं। अंदर से आदेश आया और ये पंक्ति आगे बढ़ी। हॉल में बापू बीचों बीच बैठे हैं, बच्चे उन्हें घेर कर बैठ जाते हैं। बापू सब बच्चों के सिर पर हाथ फिराते हैं, फिर एक प्यारे से गोल मटोल बच्चे को गोद में बिठा लेते हैं और उससे गुजराती में पूछते हैं, तुम्हारो नाम शू छे, तुम्हारा नाम क्या है। बच्चा अपनी टूटी फूटी गुजराती में बोलता है, मैं मुमताज अली का बेटा। गांधी जी ये सुनकर जोर से हंसने लगते हैं। वो मुमताज अली को जानते थे जो एक बहुत अच्छे एक्टर थे। बापू बोले, ठीक है बेटा, तुम जब बड़े आदमी बन जाओगे तो हम तुम्हें तुम्हारे नाम से जानेंगे। जानते हैं बच्चा कौन था? बॉलीवुड अभिनेता महमूद। उन्होंने सोचा कि अगर मैं कहूंगा कि महमूद हूं तो कौन मुझे पहचानेगा, पिता को तो सब जानते ही हैं। इसलिए सबके बीच शेखी बघारने के लिए बोल दिया, मैं मुमताज अली का बेटा हूँ। सही बात भी है, ये बात अलग है कि जल्दी ही मुमताज अली को सब भूल गए और महमूद आज भी सबको याद है। वक्त वक्त की बात है। वैसे हर पिता चाहते हैं कि उन्हें उनके बेटे के नाम से जाना जाए। चलिए यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस बार आपसे मुलाकात होगी। गाना आ रहा है आपके लिए, तुझे सूरज कहूं या चंदा एक फूल दो माली से, और उसके बाद मैं आ रहा हूँ इन बेहतरीन गानों के बाद। आप सुनते रहिए रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर समर के साथ मस्ती गीत माला फादर्स डे स्पेशल।

0: It's World Music Day. Let's celebrate music, the universal language of mankind. We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style, anywhere, anytime.
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
2: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
3: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual-focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
4: Good morning!
5: A son's first hero and a daughter's first love. Radio Masti 24/7 wishes all the daddies a very happy Father's Day.
6: पिता छोटी छोटी सी मांगों के लिए बहुत बड़ी जरूरत है। वो ना में छिपी हुई एक हाँ है, आपकी पहचान है। एक पोएट ने लिखा है, मैं हूँ कि चिंता करता हूँ, व्याकुल होता हूँ, झुकता हूँ, समझौते करता हूँ, हाथ पैर में दर्द से कराहता हूँ, पिता की तरह खांसता हूँ। वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपका हमराही समर। अच्छा, बॉलीवुड में ऐसा बहुत होता है कि फादर अपने बच्चों को लॉन्च कर देते हैं, मगर ये जरूरी नहीं कि पिता के विरसे को बच्चे संभाल पाए। एक दौर था जब 3 स्टार किड्स एक साथ फिल्म्स में आने वाले थे, और ये थे राजेंद्र कुमार साहब के बेटे कुमार गौरव, धर्मपाजी के बेटे सनी देओल और सुनील दत्त साहब के बेटे संजय दत्त। तीनों की फिल्म्स लगभग 7-7

शुरू हुई, लेकिन उस वक्त कंट्रोवर्सी भी हुई। मसलन राजेंद्र कुमार साहब ने चुना डायरेक्टर राहुल रवेल को डायरेक्शन के लिए, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा क्रिएटिव डिफरेंसेस थे। राजेंद्र कुमार चाहते थे कि उनके बेटे को वो ठीक से निर्देशित करें, अच्छा लॉन्च पैड दें। दोनों यानी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बीच इतने मतभेद हुए कि राहुल रवेल फिल्म से अलग हो गए और वो गए धर्मपाजी के बेटे सनी की फिल्म बेताब को डायरेक्ट करने। अच्छा, इधर जो कुमार गौरव की फिल्म की एक्ट्रेस थी विजेता पंडित, वो एक रोज पहुंच गई संजय दत्त की फिल्म रॉकी की लॉन्चिंग पार्टी में। राजेंद्र कुमार साहब इस बात से इतने खफा हुए क्योंकि राजेंद्र साहब ये नहीं चाहते थे कि वो वहां जाएं। वो अपनी हीरोइन को किसी के सामने रिवील नहीं करना चाहते थे, वो किसी दूसरे कैंप के साथ घुले मिले ये उन्हें बिल्कुल नागवार गुजरा। अच्छा, बदले में विजेता ने भी दोस्ती निभाते हुए संजय दत्त को लव स्टोरी के मुहूर्त पर इन्वाइट कर लिया, लेकिन संजय दत्त वहां नहीं आए। उस वक्त के मीडिया ने इस बात पर ये अटकलें लगाई कि संजय दत्त राजेंद्र कुमार से डरते हैं या उनके साथ अनकंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि राजेंद्र कुमार साहब ही वो शख्स थे जो संजय दत्त को रिहैब लेकर गए थे रिहैब सेंटर, उनकी ड्रग्स की लत छुड़ाने के लिए वही आगे आए थे। वेल, सबसे मजेदार तो ये बात थी कि कुमार गौरव ने शादी भी की तो किससे, संजय दत्त की बहन नम्रता से। जो भी हो साहब, बॉलीवुड का ये ट्रेंड है, बेटे को उसके पिता लॉन्च कर ही देते हैं, लेकिन वो चलेगा या नहीं ये पब्लिक डिसाइड करती है। चलिए, मैंने आपकी बहुत सारी जानकारी बढ़ा दी है, मुझे ऐसा लगता है अब इन गानों को भी सुन लीजिए, आपको मजा आएगा और मैं भी लौट कर आऊंगा, मेरी बातें सुनकर भी शायद आपको मजा आए, और अगर आए तो हमारे फेसबुक पेज पर आकर हमें जरूर बताएं।

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।
2: फिर भी रिश्ता जब नया होता है ना, एक्साइटिंग होता है, क्योंकि वो नया होता है।
3: दोस्ती,
4: दोस्ती की कोई वैल्यू नहीं है ना तुझे, उतने अच्छे दोस्त भी नहीं है।
3: डिजायर,
2: पर जब प्यार दोस्ती बन जाता है और दोस्ती में प्यार का रंग मिल जाता है, तो इससे बचने का एक ही सलूशन होता है।
3: सम रिलेशनशिप्स आर टेस्टेड, सम आर ट्रांसफॉर्म्ड।
5: माँ दुल्हन के लिए मेकअप,
3: शाहिद कपूर, कृति सैनन एंड रश्मिका मंदाना स्टारर कॉकटेल 2, रिलीजिंग आइलैंड वाइड ऑन 19th June एट द सिनेमास नियर यू। ब्रॉट टू यू बाय विजन डिस्क सिंगापुर।

0: guns don't kill people. No, no, no, no. Dads with pretty daughters, they definitely kill people.
1: Radio Masti 24/7 wishes all the daddies a very happy Father's Day. जोश में
2: रहो। बॉलीवुड में कितनी ही फेमस फादर सन या फादर डॉटर की जोड़ियां हैं, जैसे रणधीर कपूर, करीना, करिश्मा, जितेंद्र और एकता कपूर, अनिल कपूर, सोनम कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, सोनाक्षी सिन्हा, इसके अलावा अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन, धर्मेंद्र और सनी देओल, पंकज कपूर, शाहिद कपूर, सलीम खान, सलमान खान, राकेश रोशन, ऋतिक रोशन, ऑल इन ऑल राज कपूर और उनके बेटे रणधीर कपूर, ऋषि कपूर, राजीव कपूर की जोड़ी, राजीव कपूर की पूरी टीम, ये तो सिलसिला चलता आ रहा है। बच्चे ही उनकी फिल्मी परंपरा को आगे बढ़ाते रहे हैं। गुलजार साहब और उनकी बेटी बोस की, जावेद अख्तर और फरहान एंड जोया अख्तर ऑफ कोर्स। अच्छा, यहाँ एक बात और याद आई जो मैंने पहले भी कहा है कि कभी कभी बच्चा किसी बात पर अगर पिता से खफा हो भी जाए तो प्यार तो कम नहीं होता ना, रिश्ता ही ऐसा है। जावेद अख्तर साहब अपने पिता जानिसार अख्तर साहब से बेइंतहा नाराज थे, क्योंकि उन्होंने बॉम्बे जाकर वापस न उनकी माँ का न उनका हालचाल पूछा, लौटे ही नहीं। जावेद अख्तर और उनके भाई सलमान अख्तर पर इसका बहुत असर पड़ा, काफी कड़वाहट सी रही लोगों के बीच। साफिया यानी जावेद अख्तर साहब की मम्मी बेवक्त ही इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। जावेद और सलमान कभी अपनी खाला, कभी नानी के घर पर अजनबियों की तरह ही रहे। वेल, अपनी किताब तरकश में जावेद अख्तर साहब ने लिखा, 18 अगस्त 1976 को मेरे बाप की मौत होती है। मरने से 9 दिन पहले उन्होंने मुझे अपनी आखिरी किताब ऑटोग्राफ करके दी थी। उस पर लिखा था, जब हम न रहेंगे तो बहुत याद करोगे। शायद इसके बाद जावेद साहब के दिल से कुछ कड़वाहट कम हुई, क्योंकि उनको लगा कि आखिर ये जो शायरी है वो मिली तो उनको विरासत में, तो कुछ ना कुछ तो मिलता ही है पिता से, डीएनए ही से। जावेद साहब का तो बचपन का नाम जादू भी इनके वालिद ने ही दिया था। चलिए, वालिद के नाम एक और गाना हो जाए, पापा की परी हूं मैं, फ्रॉम फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूं और मैं आपका दीवाना हूं। अगर आप यूं ही मुझे प्यार भेजते रहेंगे, और नहीं भेजेंगे तो भी दीवाना तो मैं बना रहूंगा, क्योंकि मैं मस्ती पर हूं, मस्ताना हूं, आप लोगों का दीवाना हूं। अपना प्यार यूं ही हमें भेजते रहिए। आज की आखिरी मुलाकात के लिए बस थोड़ी देर में मिलिएगा।
3: Lady gets himself a wife.

0: You are tuned into Radio Mighty 24/7 Live, keeping you entertained on the go.
1: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा,
2: हाँ जी जी,
1: आधा केजी मसूर दाल,
2: जी जी,
1: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
2: जी जी।
1: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
2: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
1: क्या जी?
2: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोर स्टेप।
1: वाजी, क्या बात जी।
2: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

वेल, चलते चलते देखिए आखिरी पड़ाव भी आ गया। कितना कुछ है कहने को पिता पर, मगर एक एपिसोड में इसे समेट पाना नामुमकिन है। पिता विस्तार है, उतना बड़ा विस्तार जिसमें आपका पूरा वजूद छुप जाएगा। अच्छा, ट्विटर पर किसी ने अपनी बायो में लिखा, सन ऑफ अ फेमस फादर, फादर ऑफ अ फेमस सन, आई एम जस्ट हाइफन इन बिटवीन। ऋषि कपूर साहब ने लिखा था ये अपने ट्विटर हैंडल पर, राज कपूर साहब के बेटे और रणवीर कपूर के पिता। अगर हम ऋषि कपूर साहब की बात करें तो उनके ऊपर, उनके पिता, उनके पापा के ऊपर उनके पापा का हाथ था, हाँ जी, पृथ्वीराज कपूर साहब का। लेकिन राज कपूर साहब ने हमेशा खुद के बल पर आगे बढ़ना सिखाया बच्चों को, कभी बच्चों को आगे बढ़ाने की सिफारिश नहीं की, बल्कि काम सीखने को कहा हमेशा पहले। ऋषि कपूर साहब को लॉन्च जरूर किया राज कपूर साहब ने, मगर इसलिए नहीं कि वो उनके बेटे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो एक टीन यंग लव स्टोरी बनाना चाहते थे और किसी बहुत बड़े एक्टर को कास्ट करने जितना पैसा नहीं था उनके पास, बजट बहुत ही लिमिटेड था। अच्छा, और भी बहुत कुछ सिखाते रहते थे वो। फिल्म बॉबी की शूटिंग स्टार्ट हुई, सबसे पहले गाना शूट होना था, मैं शायर तो नहीं, ऋषि जी तैयार हुए बड़ी खुशी खुशी, इंतजार करते कि भैया अब कोरियोग्राफर आएंगे, स्टेप्स बताएंगे, लेकिन कोई आया ही नहीं, इंतजार खत्म हो गया। और आया कौन? पिताजी, यानी कि राज कपूर साहब जरूर आ गए। ऋषि अपने पिता को डैडी, पापा या ऐसा कुछ नहीं कहते थे, वो अपने पापा को साहब कहकर पुकारते थे। तो ऋषि ने खुद ही आकर पूछा, साहब कोई कोरियोग्राफर नहीं आया? राज कपूर साहब ने कहा, उसकी क्या जरूरत है, कोई आएगा तुम्हें अपनी नकल करवाएगा और उसी ने बाकी हीरोज को भी सिखाया होगा, तो तुम भी उसी लाइन में सवार हो जाओगे। अपना खुद का कुछ करो और भीड़ से अलग अपनी पहचान बनाओ। और पिता की सीख को माना ऋषि कपूर साहब ने और एक बेहतरीन अभिनेता बनकर दिखाया। अब और क्या लिखूं पिता के लिए कुछ और, बस यही कहना चाहूंगा, सब अपने अपने पापा को एक जोर से टाइट हग दीजिएगा और उनको कह दीजिएगा, आई लव यू पापा। हालांकि लड़कों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, मैं भी करूंगा आज। फिलहाल आपके लिए फादर्स डे पर कुछ और गाने आ रहे हैं, सुनिए उन्हें और इजाजत दीजिए मुझे, आपसे एक नए एपिसोड में मिलूंगा। तब तक करते जाइए कुछ वादे, कहिए कि आप रखेंगे अपना ख्याल, अपने अपनों का ख्याल, अपने आसपास के लोगों और चीजों का ख्याल, किसी के दिल में मोहब्बत बनकर बस जाएंगे, किसी के चेहरे पर मुस्कान बनकर सज जाएंगे और कुछ ऐसा कर जाएंगे कि लोग आपको याद रखें। याद मुझे भी रखिएगा अपनी दुआओं में, आपसे मिलूंगा यहीं पर, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर।

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into a Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: the future. Exhale the past. Radio Masti 24/7 Live wishes all our listeners happy International Day of Yoga.
1: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
2: हाँ जी जी,
1: आधा kg मसूर दाल,
2: जी जी,
1: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
2: जी जी,
1: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
2: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
1: क्या
2: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप.
1: वाजी, क्या बात जी?
2: Order today from Gigi Mart, your personal grocer.
0: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 Live. Have a masti bhara weekend.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behen aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: Perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: a son's first hero and a daughter's first love. Radio Masti 24/7 wishes all the daddies a very happy Father's Day.
1: अच्छा गुनगुन, मुझे अपने पापा के बारे में कुछ बताओ।

0: सिर्फ वीकेंड वाज अ गाय.
1: वो आ गया, देखो वो आ गया.
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल. इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग.
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा.
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप.
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: yoga, it's not about touching your toes. It's about what you learn on the way down. Radio Masti 24/7 Live wishes all our listeners happy International Day of Yoga.
1: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
2: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत
1: ये मिलता है, यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़।
3: This is Masti Madness on Radio Masti 24/7.
4: Download Radio Masti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app. Josh mein raho.
5: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
3: The perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है। यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। This is Masti Madness on Radio Masti 24/7.
2: Download Radio Masti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app. Josh mein raho.
3: The perfect recipe for you to unwind. Masti weekends only on Radio Masti 24/7 live.
4: Let's go. You already know.
5: Meri aashiqui.
6: Chahu main aana.
4: 2013.

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रचना।
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Musty 24/7 Live.
2: It's the best of Bollywood playing on Radio Musty 24/7 Live. Have a musty bhara weekend.

कोकलाची पाकी जुमेरात आई है, जेड़ा अज भी ना नचे ओदी शामत आई है। कोकलाची पाकी जुमेरात आई है, जेड़ा अज भी ना नचे ओदी शामत आई है। कोकलाची पाकी जुमेरात आई है, जेड़ा अज भी ना नचे ओदी शामत।

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musty Top 20, only on Radio Musty 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.
3: आ गया एक और हफ्ता और आ गया हमारा और आपका सबसे ज्यादा फेवरेट वाला शो जिसका नाम है द वन एंड ओनली
2: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
3: जी बिल्कुल, रेणुका योर डार्लिंग इज राइट आउट हियर ऑन द एयरवेव्स ऑफ रेडियो मस्ती 24/7 ब्रिंगिंग टू यू द वन एंड ओनली शो व्हिच इज एंडिंग योर वीक इन अ वेरी हाई एनर्जी जोन। आइए आइए, स्वागत है आपका। जी हाँ बिल्कुल, रेणुका की आवाज ही अलग होती है। मंडे सुबह आवाज सुना करो मेरी, जिसमें कि चू चू बड़े एफर्ट के साथ में निकल रही होती है, और फ्राइडे शाम की आवाज सुना करो, बाय गॉड की गजब, ऐसा लगता है कि कौन घुस गया है इस आवाज के अंदर। वेल, फिलहाल तो 20 गाने टॉप के घुस चुके हैं और आप लोगों के साथ लड़ाइयां। जी हाँ, अगर मैं यहाँ ना हूं तो लड़ाइयां करने में मजा भी कहाँ आता ना यार। मतलब क्यों ना हम मिलके, हमारा तो जैसे कहते ना फोर प्ले, जी हाँ वो है हमारा फ्राइडे का शो। पूरे टाइम पर हम और आप ये नोक झोक झोक नोक करते करते 8 बजे तक एक दूसरे के साथ में यूं लिपट जाते हैं कि बस अब तो ना अगर इसने मेरा गाना नंबर 1 नहीं चलाना तो फिर देखना जरा। बस यही तो मैं चाहती हूँ कि आप बस बैठे और तकते जाए, बातें मेरी सुनते जाए रेडियो मस्ती 24/7 पर। रेणुका एंड मस्ती टॉप चार्ट्स, ये गाना है नंबर 20 पर। कैसे पहुंचा? वेल, पिछले हफ्ते ये गाना था नंबर 19 पर, और 20 पर वो वाला गाना था जो गलती से एक बार टॉप चार्ट्स में नंबर 1 पे पहुंच गया था। मैं बता के फिर से डांट नहीं खाने वाली हूँ, इसीलिए व्हाट आई एम गोना डू राइट अवे गाइस इज लीविंग यू विद दिस ट्रैक एंड कमिंग बैक विद एन amazing I would say the countdown of Masti Top Chart. साथ रहिएगा रेडियो मस्ती 24/7 पर। आपके फ्राइडे की तैयारी जो हो रही है ना, उसमें मेरे बिना बड़ा ही बोरिंग हो जाएगा, इसलिए कहीं जाना मत। गुड इवनिंग एवरीबॉडी।
4: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 20।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोर स्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: इनहेल द फ्यूचर, एक्सहेल द पास्ट। Radio Masti 24/7 Live wishes all our listeners Happy International Day of Yoga.
3: Bollywood Flashback.
4: Ten, nine, eight, seven. Five, four, three, two, one, let's start.

0: मौसम के जादू के साथ साथ ये आपके और हमारे साथ का भी जादू है। गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7। इट इज मस्ती टॉप चार्ट्स। From rocking the charts to ruling the weekly countdown, join us on Masti Top 20. भूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। Well, for many years, I used to think भूत के पैर। रेडियो मस्ती 24/7 गाइस, रेणुका आपको बता रही है कि बचपन में हम कैसी कैसी चीजें सोच लेते हैं ना, बिकॉज हमें पता नहीं होता, राइट? सो हम जब कोई नई चीज सुनते हैं तो मोस्ट कॉमन वर्ड जो हमें समझ में आता है उस राइम के साथ में उसको समझ लेते हैं। तो जब कहते हैं भूत के पैर, तो मैं भूत तो पता नहीं मेरे को क्या होता है, बट हम भूत जरूर पता है क्या होता है। सो वो भूत के पैर पालने में पता लग जाते हैं। मैं सोचती थी ओ माई गॉड, ये बच्चे सारे के सारे भूत बन के पैदा होते हैं क्या? बट ये तो रही मस्ती वाली बात है। लेकिन राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट राह कपूर। जी हाँ, आलिया भट्ट जो है बिल्कुल तैयार हैं अपनी अपकमिंग स्पाई एक्शनर अल्फा के लिए। एंड हाल ही में उन्होंने अपनी बेटी के बारे में कुछ कहना शुरू किया। यू नो व्हाट आई हेट एंड व्हाट आई फाइंड सो सो सो फेक अबाउट मोस्ट ऑफ दीज बॉलीवुड सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज इज दैट अपने बारे में बिल्कुल कुछ नहीं बताएंगे, छुपते फिरेंगे, इनफैक्ट मीडिया को गालियां देते फिरेंगे, लेकिन जब एक फिल्म आने लगेगी तो कहीं ना कहीं से निकल के सडनली इतने प्यारे बन जाएंगे कि सबको लगेगा हाय ये कितने ग्राउंडेड हैं। 19 से 19 तक, जी हाँ यही रहा इस हफ्ते में सफर। इस गाने का है जवानी तो इश्क होना है। Coming back to Alia Bhatt, जी हाँ। So recently अपनी बेटी राहा कपूर के बारे में बोल रही थी कि ये जो बड़ी होगी ना तो मुझे पता है क्या होगा। Well, she loves movies and performing arts as a child, मतलब अपनी बात कर रही थी वो कि मैं ऐसी थी और अब राहा जो है वो भी वैसी ही है। मतलब क्या बात है, राहा इज मेंट फॉर द स्टेज ऑलरेडी। वन ऑफ दोज पेरेंट्स जिन्होंने बच्चे का बेचारे दूसरे ही साल में उसका करियर उसकी जिंदगी डिसाइड कर लिया है। कहा कि भाई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी लग रही है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज फिल्मी, शी एंजॉयज लिसनिंग टू सॉन्ग्स, मतलब नाचना भी चाहती है, स्टेप्स भी बड़ी जल्दी जल्दी पिकअप कर लेती है। भाई देखो ऐसा है, एक माँ बाप का ही जीन्स नहीं, इस लड़की के अंदर तो मतलब पूरे पूरे दो खानदानों के जीन्स हैं भाई साहब। तो भट्ट खानदान और कपूर खानदान, तो ये बच्चा कहाँ से मतलब उसको कोई ट्रेनिंग की जरूरत है? क्यों मजा क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ। 18 से 18 तक का सफर, जी हाँ। कुछ गाने ऐसे हैं जो वहीं के वहीं हैं पिछले हफ्ते से। So well, let's listen to these two and I'll be back in just a little bit telling you more about what's happening यहाँ पर मस्ती टॉप चार्ट्स पर with Renuka. Stay tuned.
1: Trending song number 19.
2: Say whoa!

0: Are you ready?
1: Are you ready?
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: What I love about you guys, जी हाँ, is that you give me some solid feedback. जब आपको कुछ अच्छा लगता है ना, तो आप उसी time लिख देते हैं. जब बुरा लगता है, तो दो तीन बार उसी time लिख देते हैं. So, well, we're just normal, right? Hello, good evening, and welcome back.
4: They are fresh. They are hot. They are spicy and they are happening. Join us on Masti.
3: तो बस ये hot, spicy and happening host की बात नहीं, गानों की बात कर रही हूँ इस time पर. Radio Masti 24/7 पर आप पहुंच चुके हैं रेणुका के साथ Masti Top Charts पर. Well, you know what? जब एक नई फिल्म रिलीज होती है, just think about it. जब आपका कोई प्रोजेक्ट लाइव जा रहा होता है, जब आपकी जिंदगी का कोई ऐसा इवेंट होता है जो कि होने वाला होता है, तो दिल में वो धक धक धक धक धक धक धक धक राइट लगी रहती है. तो आप सोच सकते हैं कि जब इन एक्टर्स की फिल्में रिलीज होने वाली होती है, उनको लगता है यार इस बार क्या होगा, चलेगी कि नहीं चलेगी, मेरी जिंदगी कहाँ जाएगी. Well, so बात कर रही हूँ सुनील शेट्टी की. 30 साल से भी ज्यादा इन द फिल्म इंडस्ट्री और 100 फिल्मों से भी ज्यादा टू हिज क्रेडिट, लेकिन आज भी nervousness before a release has not disappeared. ये कह रहे हैं सुनील शेट्टी ahead of his obviously the much talked about film which is Welcome to the Jungle. और उसी का अगला गाना, खैर अगला गाना, जी हाँ, गाना में 17 actually देखा जाए तो वही है. और इस वेलकम वाला जो ये गाना है, वेल ये नंबर आप मान नहीं सकते 17 पर पहुंच चुका है. पिछली बार किधर था ये, 15 पर था. सो गिरा है और गिरना भी चाहिए था, मुझे लगता है इट्स नॉट दैट ग्रेट, राइट. और सुनील शेट्टी को हो रही है एब्सोल्यूट एंजाइटी. वेल ही इज बीन टॉकिंग अबाउट, यू नो व्हाट, इतने साल हो गए फिर भी एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू अ फिल्म. फिल्म की सक्सेस इज टाइड टू इट्स बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस. और हर फ्राइडे अगर आप टॉप पर भी हैं, तो अगले फ्राइडे आप नीचे हो सकते हैं. सो यस, देयर इज ऑलवेज एक्साइटमेंट, एंजाइटी, टेंशन एंड नर्वस एंटिसिपेशन. भाई अक्षय कुमार है, रवीना टंडन, अरशद वारसी, परेश रावल, जैकी श्रॉफ, तुषार कपूर, जैकलीन फर्नांडिस, लारा दत्ता एंड दिशा पटनी. मतलब इन्होंने इतने सारे लोग डाल दिए कि भाई एक नहीं तो दूसरे के पीछे तो कोई ना कोई आकर देख ही लेगा. अब देखते हैं आप और मैं जाके देखेंगे कि नहीं. That is our musty song of the hour that I'm going to play. ये टॉप चार्ट्स का नहीं है, सुने साथ साथ और

0: hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: नहीं बेटा, आप आगे बढ़ो, हिम्मत नहीं हारनी है। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना और ना ही डरना है, क्योंकि दिलेर लोग ऐसे ही होते हैं। ओ माई गॉड, माई डैड, दैट्स हाउ ही यूज टू टॉक। एंड टॉकिंग अबाउट दिस, आने वाला है फादर्स डे।
3: Musty Top 20 Bollywood Chart Busters of the Week, full on Renuka style.
4: Renuka!
2: जी बिल्कुल, आपकी डार्लिंग यहाँ पर रेडियो मसी 24/7 पर आप ही के साथ में जुड़ी हुई है 5 बजे से, और आप हो रहे हैं 5:32 यहाँ पर। और मुझे लग रहा है कि भाई, इट इज टाइम फॉर मी टू टेल यू कि आज के शो में क्या खास बात होने वाली है। वैसे तो हमारे हर शो में ही कुछ ना कुछ खास होता है, स्पेशली जब मैं होती हूँ तो और भी खास होता है। सो वेल, लेट मी टेल यू गाइस, आई एम गोना प्ले सम डायलॉग्स, ओके। मैं आज के शो में 5 डायलॉग्स प्ले करूंगी और 5 डायलॉग्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन सी फिल्म से हैं और साथ ही में किसकी आवाज है। ऑलराइट, एंड इफ यू डू दैट देन यू आर गोइंग टू गेट एन अमेजिंग हेल्दी हैम्पर फ्रॉम जीजी मार्ट, ओके। मैं आपको पक्का घर पर डिलीवरी कराऊंगी, आप चिंता मत करो, आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। आज शाम एंजॉय करो मेरे साथ, और साथ ही साथ में ऑफ कोर्स आप ये जो मेरे 5 डायलॉग्स हैं जो 8 बजे तक बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, तो आपको वो सुनने हैं और उनके जवाब हमें भेजने हैं। जवाब आप हमें भेज सकते हैं अपने ऐप पे, रेडियो मस्ती 24/7 के जो ऐप से आप हमें इस टाइम सुन रहे हैं, आप वहीं पर टॉप राइट कॉर्नर पर, जी हाँ, वहां पर एक आइकॉन है व्हाट्सएप का, तो आप सीधा हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इट इज एज इजी एज दैट। ऑलराइट, सो आई एम गोना स्टार्ट प्लेइंग द डायलॉग्स एनी टाइम After these songs coming up. लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपका एक बार और शुक्रिया करना चाहूंगी कि पिछले हफ्ते मैंने एक नई चीज करी थी, ठीक है, टॉप चार्ट्स में जो कि लेटेस्ट गाने होते हैं उसमें जो हमारे बीच बीच में ब्रेक्स होते हैं ना, दूसरे वाले गाने, वो मैंने टोटल 90s और इस तरह के चलाए थे, तो आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया उस चीज को, एंड देयरफॉर आई थिंक आई एम गोइंग टू रिपीट दैट टुडे एज वेल। गान नंबर 13 जो कि पहुंचा है 16 नंबर पर इस हफ्ते। Quite a nice feet tapping gana, but well, I think we've had enough. सुनते साथ साथ रेडियो मसी 24/7 वापस आके डायलॉग के लिए तैयार हो जाइए, जी हाँ, एंड लेट्स मेक श्योर यू विन दैट हैम्पर फ्रॉम जीजी मार्ट टुडे। गुड इवनिंग एवरीवन।
0: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 16।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
4: Good morning.
5: Hollywood Flashback.

0: It's World Music Day. Let's celebrate music, the universal language of mankind.
1: 3, 2, 1.
2: और रेस सिर्फ स्पीड की नहीं, दिमाग की भी है.
3: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
4: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
5: Check it out.
6: ऑलराइट मजा आ रहा है मुझे कि यहाँ पर आप लोग लिख रहे हैं चलिए चलिए आज खूब मजा आने वाला है हैंपर जीतने में. ऑफ कोर्स आने वाला है बिकॉज एक तरफ आप सुन रहे हैं द टॉप 20 गाने ऑफ दिस वीक, दूसरी तरफ आप और हम सुन रहे हैं द बेस्ट एंड द बेस्ट एंड द बेस्ट ऑफ द मेलोडीज ऑफ बॉलीवुड बीच बीच में. एंड ऑफ कोर्स अब हम जीतने वाले हैं एक हैंपर, सो उसके लिए आप बढ़िया से बढ़िया डायलॉग सुनेंगे और मैं आपकी मेमोरी टेस्ट करने वाली हूँ. ठीक है बेटे.
0: From rocking the charts to ruling the weekly countdown, join us on Musty Top 20.
6: जोश में रखने के लिए मैं हूं ना. तो भाई ऐसा है, रेणुका के साथ में चल रहा है यहाँ पर मस्ती टॉप चार्ट्स. अगले दो गाने आपको फटाफट बता देती हूँ एंड फिर उसके बाद में मैं चाहूंगी कि आप ध्यान से वो वाला डायलॉग सुने जो कि विल बी वन ऑफ 5 डायलॉग्स प्लेड टुडे. ऑलराइट, आपको पांचों पांचों मुझे डायलॉग्स के फिल्म और साथ में जिनकी आप आवाज सुन रहे हैं उसका नाम बताना है और फिर आप जीतेंगे हैम्पर विच इज अ ब्यूटिफुल हेल्दी हैम्पर फ्रॉम जी जी मार्ट. All right, गाना नंबर 15 which was नंबर 14, नहीं नंबर 12 पे था यार पिछले हफ्ते, सीधा का सीधा नंबर 15 पर गिरा है. And this was a number 14, भूत बंगला के ट्रैक से. Continues to be on number 14. Well, on Radio Musty 24/7, guys, before I go for this hour, I need you to very much listen to this dialogue and tell me kaun si film se hai.
7: Kitna majboor hoga uska pyar aur usse majboor aap logon ne kiya.
8: Bas main tumhari koi behas nahi sunna chahta.
7: Main bhi aapse baat nahi karna chahta.
8: Why? Faisla ho chuka hai. Case is dismissed.
7: I object.
8: Don't you realize? हमारा कुल उनसे कई गुना ऊंचा है.
7: आई ऑब्जेक्ट. फिर भी खाते तो आप रोटी है ना.
8: हमारा मान मर्तबा ओहदा इतना है. आवर फैमिली स्टेटस, अंग्रेजी सरकार तक हमारी खबर पहुंचती है.
7: आई ऑब्जेक्ट. क्योंकि चलते तो आप जमीन पर ही है ना.
8: आसमान में उड़ते पंछी और पानी में तैरती मछली के बीच में कभी कोई रिश्ता नहीं हो सकता.
7: आसमान में बसे भगवान और जमीन पर बसे इंसान के बीच में रिश्ता तो देखा है ना. I said, I object.
6: Oh my God, and I object. Somebody can't be that charming. आपको बताना है मुझे ये पहला डायलॉग जो अभी अभी आपने सुना ये कौन सी फिल्म का है और इसमें किसकी आवाज थी. चलो एक बता दो, दो छोड़ो. ठीक है, रेडियो मस्ती 24/7, send us a text right away. It's 9151-8963 and I will see you. ये दो गाने नंबर 15 और नंबर 14 के उस पार. Very good evening, Renuka with you, Musty Top Charts.
9: Trending song number 15.

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।
3: भी रिश्ता जब नया होता है ना, एक्साइटिंग होता है, क्योंकि वो नया होता है।
4: दोस्ती,
5: दोस्ती की कोई वैल्यू नहीं है ना तुझे, उतने अच्छे दोस्त भी नहीं है।
4: Desire.
3: और जब प्यार दोस्ती बन जाता है और दोस्ती में प्यार का रंग मिल जाता है, तो इससे बचने का एक ही सलूशन है।
6: Some relationships are tested, some are transformed.
7: माँ दुल्हन के लिए मेकअप।
6: शाहिद कपूर, कृति सैनन एंड रश्मिका मंदाना स्टारर कॉकटेल 2, रिलीजिंग आइलैंड वाइड ऑन 19th जून एट द सिनेमास नियर यू। ब्रॉट टू यू बाय विजन डिस्क्स सिंगापुर।
8: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 14।

0: The charts are two ruling the countdown. Yes, Musty Top 20. Pumping up Friday evenings, 5 p.m. onwards. The latest and the brightest. The week's top chart busters. Musty Top 20. Only on Radio Musty 24/7 Live. The only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.
1: आइए आइए हमारे दूसरे घंटे में आपका स्वागत. जी हाँ, आई होप यू एंजॉयड ऑल दीज गाना स्टिल नाउ. गाना नंबर 14 तक आप सुन चुके हैं 2019, 18, 17, 16, 15 and 14. कमिंग अप नेक्स्ट इज गाना नंबर 13 कुछ ही मिनटों में.
2: दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर spicy and they are happening. Join us on Musty
1: Top, and of course you're joining us on Musty Top Charts, which is on Fridays. जी हाँ, शाम के 5 से 8 तक होता है ये वाला शो. और जी हाँ बिल्कुल, इसमें खून खराबे अगर हो सकते वर्चुअल एनवायरनमेंट में तो हो जाते हमारे बीच में, लेकिन आई एम सो ग्लैड हम पीसफुली रिजोल्व करते हैं अपने डिफरेंसेस एंड वी अग्री टू डिसअग्री, राइट. उसी एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट के चलते बीच बीच में हम बहुत सारी बातें करते हैं. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग राइट हियर. थैंक यू गाइस फॉर सेंडिंग योर रिस्पॉन्सेज. जी हाँ, आने लग गए हैं सही रिस्पॉन्स. ढूंढ रही हूँ सही, हाँ ना सही बड़े सारे आ चुके हैं. लेकिन हाँ, आज के दिन जैसा कि मैंने कहा, आई एम गोइंग टू प्ले 5 डायलॉग्स. उसमें से एक डायलॉग ऑलरेडी जा चुका है, बट डोंट यू वरी, आई ट्राई टू प्ले इट. इफ नॉट, बाकी के 4 आप ध्यान से सुन लें फॉर यू टू विन द हैम्पर फॉर जीजी मार्ट. अगर आपके 4 भी सही रहे और किसी और के नहीं रहे तो डजंट मैटर, आपने 5वां सुना या नहीं सुना. ऑलराइट, ऑन रेडियो मस्ती गाइस. द नेक्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू इज दैट समबडी इज प्लानिंग टू स्पेंड मोर एंड मोर टाइम इन मुंबई. जी हाँ,
3: जिन्नी सोनी लगदी है मैनू किसे होर ना लगे.
1: 11 नंबर से 13 पर गिर गया ये गाना.
3: जिन्नी सोनी लगदी
1: पति पत्नी और वो 2 के साउंड ट्रैक से. बात कर रही हूँ मैं मुंबई में कौन ज्यादा टाइम स्पेंड करने वाला है, None other than Preeti Zinta. जी हाँ, इन्होंने कुछ समय पहले अपना एक जो अपार्टमेंट है मुंबई में बेच दिया था, लेकिन हाल ही में इन्होंने एक रेंट किया है अपार्टमेंट पाली हिल लोकैलिटी में इन बैंड्रा वेस्ट 2 साल के लिए. और इसका किराया भी हम तक पहुंच चुका है 6 लाख महीने का. ठीक है, अब ये जो लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट है उसमें ये लिखा है कि 1500 स्क्वायर फीट का ये अपार्टमेंट है, 100 स्क्वायर फीट की पार्किंग स्पेस है. हंस मैं इसलिए रही हूँ कि यार मैं किस तरह की खबरें आपको बता रही हूँ. ऐसा लग रहा है मैं पड़ोसी वाली आंटी हूँ जो कि घुस के ना दूसरे, तेनू पता है इस दे घर इतना 100 स्क्वायर फुट दी पार्किंग स्पेस है. हाँ बिल्कुल, वन ऑफ दोस. रेडियो मस्ती 24/7 पर मोटी मोटी खबर यह है कि प्रीति जिंटा ने अपना घर बेच के 18.5 करोड़ में और ले लिया है 6 लाख के रेंट पे मकान. ठीक है, अब रहने वाली है मुंबई में थोड़ा सा ज्यादा, बस दैट इज वॉट यू नीड टू नो. Coming up next is गाना नंबर 13 followed by a beautiful, beautiful retro. तो इसलिए please उसको सुने बिना तो बिल्कुल कहीं मत जाना, ठीक है? और मुझे बताना कैसा लगा आपको. Good evening and this is Musty Top Chart.
4: Trending song number 13.

0: की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 live fan.
1: It's time for
2: Masti Song of the Hour.

0: From rocking the charts to ruling the weekly countdown. Join us on Masti Top 20.
1: Masti Top 20 par Renu ka with you since 5 in the evening guys. And of course, agar aap encore sun rahe hain, toh bhi 5 baje se main aapke saath hoon. Lekin din Friday nahi hai. Right. आप लाइव सुन रहे हैं देन ऑफ कोर्स दिस कॉन्टेस्ट इज फॉर यू गाइस इफ यू वांट टू विन द हैम्पर बहुत ही हेल्दी हैम्पर जिसके अंदर नट्स हैं जिसके अंदर बड़े ही कमाल की हेल्थ ओरिएंटेड स्नैक्स हैं वो चीजें अगर आपको चाहिए और वो भी फादर्स डे पर तो फिर भाई अपने लिए मत जीतो तो अपने घर के उस मर्द के लिए जीतो जो कि बाप है और फिर ऑफ कोर्स खुश कर दो यार गिफ्ट के पैसे भी बचेंगे तुम्हारे रेडियो मस्ती की तरफ से मिल रहा तुमको गिफ्ट और क्या चाहिए है ना और हमारे जीजी मार्ट की तरफ से मिल रहा तुमको गिफ्ट और वो भी हेल्दी वाला बट ऑन रेडियो मस्ती गाइस पहले मैं आपको डायलॉग अगला वाला सुनाने से पहले बताना चाहूंगी कि काला हिरन द बैटल फॉर लेगेसी जो फिल्म इंस्पायर हुई है ओ यार ब्लैक बक पोचिंग से जी हाँ 1998 का वो वाला केस जिसके साथ में सलमान खान का नाम जोड़ा जाता है तो वेल गोविंद नामदेव ने अपने आपको उससे डिस्टेंस कर लिया है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया अमित जानी ने और उसमें नामदेव जो है वो एक्चुअली एडवोकेट बने हैं ठीक है एंड ही इज ऑन बिहाफ ऑफ द बिश्नोई कमेटी नाउ फॉलोइंग द रिलीज कंट्रोवर्सी हो गई और सलमान खान ने बोल दिया बेटा ये फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए बकवास बिल्कुल साइड पर रखो हैं तो नामदेव ने ये बोला कि भाई ही वाज अनअवेयर काला हिरन का एक्चुअल नैरेटिव क्या था एंड ही वाज केप्ट इन द डार्क अबाउट इट्स इंटेंट आफ्टर दैट जानी ने एक जानी वो वाले जानी नहीं मैं बात कर रही हूँ अमित जानी की जिन्होंने लीगल नोटिस भेजा और डिमांडेड अ पब्लिक अपॉलॉजी विद इन 7 days साथ ही साथ में 50 लाख का जो जुर्माना हुआ फॉर द प्रोडक्शन हाउस ठीक है कि ऐसे कैसे बोल सकते हो मतलब ऐसे कैसे बोल सकते हो कि तुमको पता ही नहीं था कुछ भी ऐसे थोड़े होता है बट ऑन रेडियो मस्ती गाइस होता कुछ ऐसा है कि मैं आपको सुनाऊंगी अगला डायलॉग और वो अगला डायलॉग क्या है ये आप अब सुनने वाले हैं या फिर छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं व्हाट से है ना चलो वापस आते हैं अभी फटाफट गाना नंबर 12 और साथ में गाना नंबर 11 सुनने के बाद में
2: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
3: Check it out.
2: Trending song, number 12.

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप। Trending song, number 11.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर,
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।
2: जी जी जी जी, डायलॉग बिल्कुल इस समय प्ले करने का टाइम आ चुका है। हमारा दूसरा डायलॉग ऑफ टुडे इज गोइंग टू बी प्लेड राइट आफ्टर दीज फ्यू सेकंड्स।
3: From rocking the charts to ruling the weekly countdown, join us on Masti Top 20.
4: तो मुझे नहीं होना है सेंसिबल। मैं बेवकूफ हूँ, मैं खराब हूँ, मगर मैं आप लोगों में से एक नहीं।
2: ओह, मैं नहीं बोल रही है, हाँ मैं नहीं बोल रही हूँ। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। ये कौन है आपको हमें बताना है, ठीक है? दिस वॉज डायलॉग नंबर टू। यू हैव टू टेल मी द फिल्म एंड द नेम ऑफ द एक्टर जिनकी आवाज आपने अभी भी सुनी। ऑलराइट, ऑन रेडियो मस्ती वी आर गोइंग टू बी प्लेइंग फाइव डायलॉग्स टुडे, जैसा कि मैंने बताया, और पांचों में से अगर आप मुझे पांच के पांच सही बता सकते हैं तो हैम्पर आप ही का है, बट आई थिंक इट इज अनलाइकली कि आप में से कोई भी मुझे पांच सही जवाब बता पाएगा। लेकिन अगर चार भी आप बता पाए या तीन भी आप सही बता पाए तो मे बी यू स्टैंड अ चांस टू विन दिस हैम्पर टुडे। सो जस्ट टेक्स्ट अस गाइस 9151896 3, एंड दैट इज हाउ वी कैन गेट दिस हैम्पर डिलीवर्ड विच इज फुल ऑफ सम अमेजिंग अमेजिंग हेल्दी ट्रीट्स कर्टसी आवर क्लाइंट जी जी मार्ट। This song must be probably the biggest drop of this week. पति पत्नी और वो दो के साउंडट्रैक से गाना था पांचवें नंबर पर, और इस समय आप सुन रहे हैं इसको दसवें नंबर पर। That is exactly what Top Charts is all about, guys. आज हम कहाँ हैं और अगले हफ्ते हम कहाँ हैं? ऐसा हो सकता है जिंदगी की तरह, राइट? रेडियो मस्ती 24/7 पर, आई होप आप सिर्फ ऊपर ऊपर ऊपर ही जाएं जिंदगी में, इन गानों की तरह नीचे ना गिरे, है ना? चलिए सुनते हैं ये, एंड आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। स्टे ट्यून्ड।
5: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
6: Check it out.
7: Trending song, number 10.

0: यार ये वाला गाना ना मुझे आज भी याद है। अमिताभ बच्चन और स्मिता पाटिल, बड़े पर्दे पे मैंने ये जब फिल्म देखी थी, पता नहीं कब देखी थी, आई कैन यू रिमेम्बर, एंड डोंट यू जज माई एज बाय दैट, ऑलराइट, बिकॉज ये फिल्म एक बार नहीं कई बार बड़े पर्दे पे आ चुकी है, तो ज्यादा स्मार्ट भी मत बनो। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, रेडियो मस्ती 24/7 पर, दिस इज मस्ती टॉप चार्ट्स विद रेणुका।
1: दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर स्पाइसी एंड दे आर हैपनिंग। जॉइन अस ऑन मस्ती।
0: पता है कभी कभी ना जिंदगी में कोई ना कोई हमारी लाइफ से बिल्कुल गायब हो जाता है, सडनली गायब हो जाता है, और फिर हम सोचते हैं यार ये बंदा तो गायब हो गया अचानक से, और फिर कहीं से प्रकट हो जाता है, और फिर वापस आने के बाद अपनी वही वही जगह वापस मांगता है। तो क्या उसको वो जगह दे देनी चाहिए या नहीं? नहीं, इतना भी डीप नहीं है कि डियर मस्ती दिल से हमारा जो शो है उसमें लाया जाए। मैं सिर्फ और सिर्फ एक गाने की बात कर रही हूँ। जी हाँ, ये गाना निकल गया था, बिल्कुल निकल गया था, और जब ये निकला था उस समय ये गाना था शायद नंबर 6 पे या नंबर 5 पर, और फिर हमने इसको जब लात मारी टॉप चार्ट्स में से, तो इसने मेहनत करके वापस घुसने की पूरी ठानी। यार ये धुरंधर के जो साउंड ट्रैक्स है ना, ये रियली दे आर नॉट विलिंग टू गिव अप, आर दे? तो इसको गाना नंबर 9 हमने बना के इस हफ्ते बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत किया है इसका। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर रिक्वेस्टें आ रही हैं कि भाई ऐसा है प्लीज वो ये जो 2 डायलॉग हमारे मिस हुए हैं एक बार ये फिर से चला दो। तो आई एम गोना डू दैट ऑन पॉपुलर डिमांड। डायलॉग नंबर 1,
2: कितना मजबूर होगा उसका प्यार, और उसे मजबूर आप लोगों ने किया।
3: बस, मैं तुम्हारी कोई बहस नहीं सुनना चाहता।
2: मैं भी आपसे बात नहीं करना चाहता।
3: फाइन, फैसला हो चुका है, केस इज डिसमिस्ड। आई ऑब्जेक्ट। डोंट यू रियलाइज हमारा कुल उनसे कई गुना ऊंचा है।
2: आई ऑब्जेक्ट। फिर भी खाते तो आप रोटी है ना।
3: हमारा मान मर्तबा ओहदा इतना है, आवर फैमिली स्टेटस, अंग्रेजी सरकार तक हमारी खबर पहुंचती है।
2: आई ऑब्जेक्ट, क्योंकि चलते तो आप जमीन पर ही है ना।
3: आसमान में उड़ते पंछी और पानी में तैरती मछली के बीच में कभी कोई रिश्ता नहीं हो सकता।
2: आसमान में बसे भगवान और जमीन पर बसे इंसान के बीच में रिश्ता तो देखा है ना। आई सेड आई ऑब्जेक्ट।
0: यार क्या डायलॉग है, क्या इंटेंसिटी है, एंड द सेकंड डायलॉग ऑफ टुडे।
4: तो मुझे नहीं होना है सेंसिबल, मैं बेवकूफ हूँ, मैं खराब हूँ, मगर मैं आप लोगों में से एक हूँ।
0: क्या बात है, मैं आप लोगों में से एक हूँ, लेकिन ठीक है, मुझे भेज दो यहाँ पर आंसर्स 9151896 3। आई एम वेटिंग गाइस, एंड ऑफ कोर्स यू एंजॉय गाना नंबर 9 फॉलोड बाय एन अमेजिंग ट्रैक कमिंग अप नेक्स्ट। रेडियो मस्ती 24/7 पर।
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
6: चेक इट आउट।
7: फिर भी रिश्ता जब नया होता है ना, एक्साइटिंग होता है, क्योंकि वो नया होता है।
8: दोस्ती,
9: दोस्ती की कोई वैल्यू नहीं है ना तुझे,
10: उतने अच्छे दोस्त भी नहीं।
11: Desire.
7: पर जब प्यार दोस्ती बन जाता है और दोस्ती में प्यार का रंग मिल जाता है, तो इससे बचने का एक ही सलूशन है।
12: Some relationships are tested, some are transformed.
13: माँ दुल्हन के लिए मेकअप।
12: Shahid Kapoor, Kriti Sanon and Rashmika Mandanna starrer Cocktail 2. Releasing island-wide on 19th June at the cinemas near you. Brought to you by Vision Discs Singapore.
14: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस। डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
5: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 9।

0: It's World Music Day.
1: I would have stayed at home, 'cause I was doing better alone. But when you said hello, I knew there was the end of it all. I should have.
0: Let's celebrate music, the universal language of mankind.
2: 3, 2, 1.
3: अब रेस सिर्फ स्पीड की नहीं, दिमाग की भी है।
4: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
5: Oh, and by the way, guys, have you already sent us that special text called LION, Lion, just to participate in the Lion City Challenge? जी हाँ, जो कि सिंगापुर का स्मार्टेस्ट गेम है. आप अगर स्मार्ट नहीं हो तो अलग बात है, मत भेजो हमें यहाँ पर मैसेज. लेकिन अगर स्मार्ट हो तो वी आर वेटिंग फॉर योर मैसेज.
0: From rocking the charts to ruling the weekly countdown, join us on Musti Top 20.
5: Smartphone है, smart home है, बहुत कुछ smart है, पर अगर आप smart हैं, तो then you have to be a part of the Lion City Challenge. जी हाँ, just send us a text saying Lion और उसके बाद आपके पास पहुंचेंगे दो सवाल. जैसे आपके पास आएंगे, आपको उनके जवाब भेजने हमें WhatsApp पर, और WhatsApp के बाद में आपके पास आएगा email. जी हाँ, email में application form होगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा आपके बारे में कुछ and of course, आपके वो बडीज के बारे में जो कि आपको फोन अ फ्रेंड टाइप हेल्प करेंगे ड्यूरिंग द गेम. एंड ऑफ कोर्स और भी छोटी छोटी बातें पूछी जाएंगी अलोंग विद दैट फुल एप्लीकेशन फॉर्म एंड अ स्मॉल एप्लीकेशन फी. आपको यहां पर पार्टिसिपेट करना है हमारे इस गेम में, विच इज कॉल्ड द लायन सिटी चैलेंज. लास्ट डेट आने वाली है, जरा जल्दी फटाफट करो. लेकिन फिलहाल के लिए हम यहाँ पर खेल रहे हैं हमारा मस्ती टॉप चार्ट्स का ये वाला शो, जिसमें कि 5 आपको डायलॉग सुनाए जा रहे हैं और आपको जीतना है अभी के अभी. जी हाँ, बिल्कुल कोशिश यही रहेगी. अगर बहुत ज्यादा सही जवाब नहीं आए तो अभी के अभी मैं बता दूंगी आपको कि कौन जीता है ये हैम्पर कर्टसी जीजी मार्ट. एंड इसी बात पर आपका जो अगला डायलॉग है दैट इज कमिंग अप नाउ.
6: जिसके साथ व्यापार करो उससे कभी ना प्यार करो. प्यार में बैठ के जुड़ी कभी नहीं बैठती ना. मैं तो सिंगल ही बेस्ट.
7: तू कहाँ पहुंच गई? प्रॉमिस मैं कभी फ्रेंडशिप के आगे नहीं बढ़ूंगा.
6: क्या गारंटी है?
7: ले ब्रेड पकौड़ी कसम.
5: ब्रेड पकौड़े की कसम. Come on, you can't miss this dialogue. Quickly, मुझे बताइए कौन सी फिल्म का है और किसके आवाजें आपने यहाँ पर सुनी है. अगर अभी तक पहला, दूसरा और तीसरा आपका सही निकला तो you're already amongst the majority. I can tell you that. Radio Masti 24/7 पर आ रहे हैं धीरे धीरे जवाब आ रहे हैं. Come on guys, so show some energy on a Friday evening. ठीक है, सिर्फ मेरी आवाज नहीं, आपकी हरकतों में भी थोड़ी सी एनर्जी होनी चाहिए. Coming up next is गाना नंबर, कौन सा गाना नंबर है यार, 8.
8: लाई मस्कारा लकिया निभाई रखना.
5: Just by yourself. और अपने बच्चों को भी दिखाने का तरीका यही है कि क्या हुआ था पार्टीशन के टाइम. Of course, there's violence, so be a little bit cautious there. मिलती हूँ आपको अगले घंटे. This is Radio Masti 24/7 Top 7 गानों के साथ में. अभी बस छोटे से ब्रेक के बाद.
9: Radio Masti 24/7. Download Radio Masti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
10: Trending song, number 8.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
4: हाँ जी जी,
3: आधा kg मसूर दाल,
4: जी जी,
3: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
4: जी जी।
3: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
4: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
3: क्या जी?
4: जी जी, जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
3: वाजी, क्या बात जी।
4: Order today from GG Mart, your personal grocer.
5: Bollywood flashback.
6: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंज गम की स्याही जो दिल पे छाई है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी

0: टू रूलिंग द काउंटडाउन, ये है मस्ती टॉप 20 पंपिंग अप फ्राइडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स, द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स, मस्ती टॉप 20 ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, द ओनली लाइव बॉलीवुड रेडियो अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया सिंस 2009।
1: बाली सागू का ये वाला गाना थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन कभी कभी मेरे दिल में आए हाय, मतलब फ्राइडे शाम को कोई ऐसे बैठे और बिल्कुल आराम से ये वाला गाना सुने ना, उफ, टू गुड। रेडियो मस्ती 24/7 पर आई एम बैक विद द हॉट, द हैपनिंग, द स्पाइसी, फ्रॉम रॉकिंग द चार्ट्स टू रूलिंग द वीकली काउंटडाउन, जॉइन अस ऑन मस्त। एंड सिंस यू ऑलरेडी जॉइंड, लेट मी टेल यू, रेडियो मस्ती 24/7 पर इस घंटे हम सुनेंगे 7 हमारे काउंटडाउन के गाने, एंड साथ ही साथ में 2 हमारे डायलॉग्स जो अभी तक बाकी बचे हैं फॉर यू टू विन दैट हैम्पर फ्रॉम जीजी मार्ट, राइट? After all, Father's Day इस वीकेंड पर, you need that. But well, I want to talk about something. हमारी जिंदगी में कभी कभी ऐसा कुछ होता है कि भाई कुछ होता है तो हम एकदम शॉक हो जाते हैं, है ना, सरप्राइज हो जाते हैं, कैसे हो गया, फिर हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, फिर थोड़े दिनों के बाद में हम दोबारा से उस बात को भूलते हैं, फिर दोबारा से याद आती है, लेकिन यार ये कैसे हुआ, एंड वी कम बैक टू इट, राइट? धुरंधर इज जस्ट दैट। रणवीर सिंह ने टोटली सरप्राइज किया और उसके बीच में कुछ कॉमिक मोमेंट्स थे, इफ यू रिमेंबर सो वेल, लेडीज एंड जेंटलमैन, यू विल बी सरप्राइज्ड कि वो कॉमिक मोमेंट्स आदित्य धर का आइडिया बिल्कुल नहीं था। इनफैक्ट ही डिड नॉट वांट कि स्पाई थ्रिलर में कोई भी मजाक की बातें हों, ये आइडिया था हमारे राकेश बेदी जी का। सो वेल, हाल ही में राकेश बेदी वॉज अटेंडिंग द अमृत रत्न 2026 समिट इन न्यू दिल्ली, जहां पर ही टॉक्ड अबाउट हिज धुरंधर फ्रेंचाइज का रोल एंड ऑल दैट। बड़े सारे लोगों ने बातें करी उनसे और फिर वो वाली बात आई जो कि एक रूमर काफी समय से चल रहा है, एंड दैट सेज कि भाई ये जो स्क्रिप्ट है ना धुरंधर की, ये PM ऑफिस से आई थी, क्योंकि इसमें सारी बीजेपी की बातें कर रहे हैं, यू नो, बड़ाई हो रही है, ये है वो है, तो जमील जमाली जो हैं अपने हरकतों पे आ गए, उन्होंने अपना एक डायलॉग बताया। आपको शायद याद होगा धुरंधर में एक ऐसा सीन था जिसमें बहुत सारे डक्स थे, राइट? और डक्स को हम हिंदी में बोलते हैं बतख, तो इन्होंने उसको बतख की जगह कहा था, आपके बटॉक्स बहुत ही वाइट हैं। And it turned out to be quite a funny scene during, you know, when you're watching that film. तो इन्होंने कहा, आप मुझे ये बताइए, अगर PM ऑफिस से ये स्क्रिप्ट आ रही है, PM ऑफिस में कौन इतना ज्यादा क्रिएटिव है कि बतख को बटॉक कहेगा? ओहो, पिछले हफ्ते ये गाना 9 नंबर पर आया था, वेलकम टू द जंगल का ऊंचा लंबा कद, इट इज नाउ दिस वीक ऑन नंबर 7। डू यू थिंक ये गाना आगे जाएगा या पीछे गिर जाएगा? टेल मी, 9151896 3 गाइस, कम ऑन, टॉक टू मी ऑन रेडियो मस्ती 24/7, इट्स मस्ती टॉप चार्ट्स विद रेनुका।
2: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever-buzzing Facebook page. Radio Musty 24/7 Singapore.
3: Check it out.
4: Trending song. Number 7.

0: एंड आई एम श्योर आपको भी हो गया प्यार. जी हाँ, रेडियो मस्ती 24/7 से मुझसे और हमारे मस्ती टॉप चार्ट से है कि नहीं है ना.
1: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल.
0: And of course, there is Aarti and there is Sapna Ji and there is my dear Ruchika, oh my darling, जो कि हमेशा मेरे साथ में टिके ही रहते हैं पूरे के पूरे शो तक. Of course, I cannot say no thanks to Sanjay and to of course my Lalita darling and of course to some people जो छुप छुप के यहाँ पर मुझे messages लिख रहे हो, बोल रहे नाम नहीं लेना, नाम नहीं लेना. And some people who really don't like it अगर मैं उनका नाम लूँ, so I'm not doing it, but thank you so much. And by the way, please make sure कि आप सारे के सारे जो है ना यहाँ पर जवाब जरूर दें. अब तक 3 dialogues हो चुके हैं और after the 5 dialogues, let me tell you कि आप जीत सकते हैं ये hamper from GG Mart and you will not regret it, हाँ. Just go online www.ggmartonline.com and वहाँ पे जाके देखिए healthy चीजें क्या क्या हैं और ये सारी की सारी हैं इस hamper में. So it is really worth just enjoying yourself and getting entertained. Radio Masti 24/7 पर अभी तक आपने सुने हैं गाने बहुत सारे, 7 तक हो चुका है. एंड नाउ द नेक्स्ट गाना, वेल लेट मी टेल यू, इज अ न्यू एंट्री. एंड न्यू एंट्री जो है ना, आते ही नंबर 6 पर जब आ जाए तो बंदा सोचता है क्या हुआ. एंड आप सही पहचान रहे हैं, ये है वो फिल्म जो रिलीज हो रही है आज, हो गई है आज. It is Kriti Sanon and of course Rashmika and at the same time Shahid Kapoor. रेडियो मस्ती 24/7 पर बात करें कॉकटेल 2 की. अगर आपने नहीं सोचा है इसको देखने का तो वेल यू कैन, बिकॉज दिस इज वन मूवी जो एडल्ट कैटेगरी की आई है आफ्टर एजेस. मतलब देयर मस्ट बी समथिंग इन दैट, राइट. आई विल लीव यू टू डिसाइड दैट, बट फिलहाल के लिए हमारा अगला डायलॉग प्लेइंग हियर जस्ट फॉर यू.
2: अगर आज भी किसी चीज की कमी महसूस होती है तो वो क्या है? उन चीजों के लिए वक्त निकालो जिनसे तुम्हें सचमुच खुशी मिलती है, लाइक कुकिंग.
3: ओह, दैट्स द प्लान. आई मीन 40 के बाद आई रिटायर एंड
2: ड्यूड, तुमने कैसे बताया कि तुम 40 तक जिंदा रहोगे? सीज द डे माय फ्रेंड, पहले इस दिन को पूरी तरह जियो, फिर 40 के बारे में सोचो.
0: How true is that? मुझे भी कोई इस तरह का दोस्त मिल जाए जो जिंदगी में ये बोले कि बेटा कल का मत सोच, आज का सोच, लिव इन द मोमेंट. What a beautiful message right now, Radio Masti 24/7 पर. ये कौन सी फिल्म का डायलॉग है और किसकी आवाज सुनी आपने? Tell me right away, 9151893. That was dialogue number 4. And coming up next is गाना नंबर 6. Confused हो गए?
4: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
5: Check it out.
4: Trending song, number 6.

0: भी रिश्ता जब नया होता है ना, एक्साइटिंग होता है, क्योंकि वो नया होता है।
1: दोस्ती,
2: दोस्ती की कोई वैल्यू नहीं है ना तुझे, उतने अच्छे दोस्त भी नहीं है।
0: और जब प्यार दोस्ती बन जाता है और दोस्ती में प्यार का रंग मिल जाता है, तो इससे बचने का एक ही सलूशन है।
3: Some relationships are tested, some are transformed.
4: Na dulhan ke liye makeup.
3: Shahid Kapoor, Kriti Sanon and Rashmika Mandanna starrer Cocktail 2, releasing island wide on 19th June at the cinemas near you. Brought to you by Vision Discs Singapore.
5: It's World Music Day. Let's celebrate music, the universal language of mankind.
6: Bollywood Flashback.

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: सबसे ज़्यादा खुशी का टाइम तब होता है जब हमारे यहाँ पर व्हाट्सएप पे नए नए लोग मैसेजेस भेजते हैं जिनके हमारे पास नाम नहीं होते. सो ऑब्वियसली दीज आर न्यू नंबर्स दैट आर कमिंग टू अस, एंड उन न्यू नंबर्स से जब हमारे साथ लोग जुड़ते हैं ना, तो मैं सच बता रही हूँ, मेरे अंदर ना इतनी खुशी होती है. थैंक यू सो मच ईच वन ऑफ यू. दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, they are spicy and they are happening. Join us on Masti Top. जी बिल्कुल, Masti Top 20 पर इस समय आप और हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं मस्ती के टॉप चार्ट्स की. और टॉप चार्ट्स मतलब कि 20 ऐसे गाने जो कि आपको और हमको टोटली हिला के रख देते हैं पूरे पूरे हफ्ते में. एंड ऑफकोर्स यू एंड आई हैव दिस डिसएग्रीमेंट कि नहीं, ये तो होना ही नहीं चाहिए था. वेल, अगला गाना जो नंबर 5 पर है वो है ये वाला. 12 नंबर से शुरू हुआ था, फिर 7 पे पहुंचा पिछले हफ्ते, एंड दिस वीक इट्स ऑन नंबर 5. एंड आई थिंक इट्स अ वेल डिजर्व्ड गाना कि जो बस ऊपर ऊपर ऊपर ऊपर होता चला जा रहा है. खैर, फिलहाल के लिए अगला डायलॉग जो हमारा आखिरी डायलॉग है आज का, वो है ये वाला.
3: आपकी क्या अपेक्षा है अपनी होने वाली वाइफ से?
4: सुबह उठे तो हमारे लिए चाय बना दे, फिर नाके निकले तो नाश्ता तैयार कर दे, दफ्तर जाए तो हमारा डब्बा तैयार कर दे, जैसे मम्मी कर रही है पापा के लिए सालों से. दफ्तर से वापस आए तो सजी धजी तैयार मिले हमें, रात को हमारे पैर दबा दे, ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है हमारी.
2: हाय, कितना प्यारा है ये, कौन है ये? और फादर्स डे का हैम्पर इसको ही मिलना चाहिए वैसे तो. बट यू कैन राइट टू अस ऑफ कोर्स टू विन द हैम्पर फॉर योर फादर और द फादर ऑफ योर किड्स, और इफ यू योरसेल्फ आर अ फादर देन व्हाई नॉट फॉर योरसेल्फ, राइट? रेडियो मस्ती 24/7 पर हमारे ये 5 डायलॉग्स यहाँ पर समाप्त होते हैं, बट वी आर गोइंग टू स्टार्ट काउंटिंग एंड वी आर गोइंग टू सी हु इज द विनर ऑफ टुडेज हैम्पर. लेकिन फिलहाल के लिए अगला गाना जो नंबर 5 पर है वो ये रहा. सुनिए इसको और वापस आइए 4 गाने सुनने के लिए. कौन सा होने वाला है नंबर 1 पर आज? We'll figure that out just in a while.
0: Trending song number 5.

0: ऑलराइट एंड इस समय आपका स्वागत करने के लिए रेडियो मसी 24/7 पर और कौन, मैं ही तो हूँ रेणुका, शाम के 5 बजे से. एंड ऑफ कोर्स हम और आप सुन रहे हैं साथ साथ द हॉट द हैपनिंग द स्पाइसी.
1: From rocking the charts to ruling the weekly countdown, join us on Masti Top 20.
0: Can you imagine? हमारे टॉप चार्ट्स पर पिछले 2 हफ्ते से एक इस तरह का गाना था जो आया, ठीक है, आया तो ठीक है, झूमता झामता सा आया. उसके बाद थोड़ा अगली बार आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा और अब पहुंच चुका है टॉप 4 में. Can you believe it? बात कर रही हूँ मैं इस गाने की.

0: इंस्टाग्राम पे रील्स देखेंगे ना इसके, तो आप बिल्कुल हिल के रह जाएंगे। ऑफकोर्स ये गाना तो होगा ही टॉप चार में। पर आज के दिन ये 1, 2, 3, 4 क्या होगा? Alright, and the other one is So well, हमारे टॉप चार में से तीन तो वही हैं जो पिछले हफ्ते भी थे टॉप थ्री में, टॉप फोर में, लेकिन चौथा नया है आज के दिन में। Quite amazing, right? And the last one, of course, is जैसे ही गाना चलता है ना, मुझे कम से कम 8, 10, 12 लोगों का एकदम से मैसेज आता है, नंबर वन नहीं होना चाहिए गहरा हुआ। So ladies and gentlemen, I'm giving you exactly 3 minutes to tell me number one कौन सा गाना होने वाला है। अगर आपने on top of the dialogues कौन सी मूवी से हैं और कौन है उनमें आवाजें उसके ऊपर ये बता दिया ना, तो मैं अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा आपको हैम्पर भेजूंगी, ठीक है? रेडियो मस्ती 24/7 पर सुनते हैं गाना नंबर 4, stay tuned.
1: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever-buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
2: Check it out.
1: Trending song, number 4.

0: हाँ तो भाई माशूका, मेरी माशूका और मेरे माशूक, इतना बता सकती हूँ आपको कि अब मेरे यहाँ से खिसकने का टाइम आ गया है. एंड सम ऑफ यू ऑलरेडी नो दैट राइट, एंड यू आर राइटिंग टू मी. अब तो तुम तो भाग जाओगी, आज तो तुम 7:38 पे ही भाग जाओगी. नहीं मतलब भागने का क्या मतलब है, मैंने पूरा शो किया है यार, ऐसे कैसे मतलब भाग थोड़े रही हूँ, डर के मारे खिसक रही हूँ.
1: From rocking the charts to ruling the weekly countdown, join us on Masti Top 20.
0: जोश में रहिए. जी हाँ बिल्कुल, गाना नंबर 3, 2 और 1. अब इन तीनों में से फिर से, जो कि फिर से आया हमारे टॉप चार्ट्स में सिर्फ 2 हफ्ते पहले. But what an amazing track, guys. Seriously. Another beautiful track for sure. And then, of course, there's the one and only. तीनों गाने धुरंधर के ही, एंड तीनों ही गाने एक के पीछे, मतलब एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं. कोई किसी को आगे नहीं जाने दे रहा, एक आगे जाता है तो दूसरा उसको खींच लेता है, पीछे हो जाता है अगले हफ्ते, फिर वो थोड़ा सा अगला वाला आगे बढ़ता है तो तीसरा वाला खींच लेता है. वेल दे आर एब्सोल्युटली टफ कॉम्पिटिशन फॉर ईच अदर गाइज. बट वेल कहते ना एक ही घर में बच्चा पहला वाला फर्स्ट है या दूसरा वाला है, तो एक ही माँ बाप का बच्चा. बट ऑन रेडियो मस्ती गाइज, टाइम फॉर मी टू खिसक फ्रॉम हियर, बिकॉज नाउ फ्रॉम हियर onwards I will be only on chat with you, all right? क्योंकि नहीं मैंने नहीं यहाँ पर कुछ बोलना. यही तीन गाने हैं, इनमें से एक जाएगा नंबर वन पर. कौन सा? That is for you to find out. मुझे तो पता है. Good evening and have a fantastic rest of the weekend, guys. I'll see you on Monday morning on the morning show. फिलहाल के लिए take good care of yourselves because I need you to do that. And remember to smile because आरती तुम बोलोगी या मैं बोलूँ? Smile is definitely the second best thing you can do with your lips. Bye. Trending song number 3.

0: 3, 2, 1.
1: और रेस सिर्फ स्पीड की नहीं, दिमाग की भी है।
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: It's time for
4: Musty Song of the Hour.
5: Song of the Hour.

0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: ट्रेंडिंग सॉन्ग, चेक इट आउट, नंबर 1।

0: Girls don't kill people. No, no, no, no. Dads with pretty daughters, they definitely kill people.
1: Radio Masti 24/7 wishes all the daddies a very happy Father's Day. Josh Mehra.
2: दोस्तों आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय?
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल? इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग?
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा?
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप?
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Don't

रहना मुझे घर पे नहीं रहना, आज तेरे नाल मेरी सारी शाम गुजरनी नहीं, आज मुझे दुनिया की सुननी, मुझे तो है बस अपनी ही करनी। असली सुनना।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: हिट रेसिपी फॉर यू टू अनवाइंड. मस्ती वीकेंड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
1: मुंबई.

0: स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: Perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो, तुम जिंदा हो, तुम नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो, तुम जिंदा हो, तुम हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सको, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सको, हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखिए निगाह, जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो, तू जिंदा हो, तुम दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Just

0: yoga, it's not about touching your toes. It's about what you learn on the way down. Radio Masti 24/7 Live wishes all our listeners happy International Day of Yoga.
1: और कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे?
2: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
3: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप। जोश में रहो।
4: इट्स द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। हैव अ मस्ती भरा वीकेंड।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
4: Good morning!
3: Perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: It's World Music Day.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
0: क्या
1: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: रात अकेली है तो क्या, हम तो आप

0: अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: As you say, sunshine.
2: Sunshine? कहाँ से ढूंढकर लाते हो तुम ये सब प्राचीन वर्ड्स?
1: जहाँ से मैं आया हूँ।
2: ओह, तो आप यहाँ क्या लेने आए हैं?
1: प्यार।
2: Just a tip. हमारी दुनिया में प्यार व्यार नहीं होता, तो शायद आपको खाली हाथ जाना पड़े, क्यों ना?

0: रात भी बाकी है, मगर अभी रात अकेली है।
1: वाह, क्या तेवर है सुनील के आने का।

बात भी बाकी है, मगर अभी रात अकेली है। जोश में रहो।

0: नशा है और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना
1: रात अकेली है जोश में रहो।

0: जान बचाओ,
1: पी जाओ।
0: इसमें क्या है
1: तुम्हें पता है,
0: पी के मरूं क्या?

नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ। भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

0: दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी।
1: जिंदगी मिलके बिताएंगे, बिल्कुल साथ साथ बताएंगे, स्पेशली हर मंडे मॉर्निंग तो बिल्कुल 7 बजे से 10 बजे तक साथ साथ एक दूसरे की जान खाएंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू रेडियो मसी 24/7। सीरियस हेडलाइंस with a not so serious vibe, only on the morning show on Radio Masti 24/7. Morning show Radio Masti 24/7 पर आप है रेनुका के साथ। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना है, ये टाइम है आपके और हमारे पूरे के पूरे लाइफ अपडेट्स का। जी हाँ, अपडेट्स, दुनिया भर की अपडेट्स, आपने और हमने क्या किया वीकेंड पर, और अपडेट्स की आने वाले हफ्ते में क्या चीजें हैं जो आपको डेफिनेटली ध्यान में रखनी पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले इस हफ्ते का कोट, जी हाँ, लाइफ कोट। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और देखिए ना, आज का ज्ञान इस घंटे का शुरुआत करने से पहले आपको बताना चाहूंगी कि भाई, कहा जाता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक जिंदगी मिलती है, सो मेक श्योर यू आर द वन राइटिंग द स्टोरी, यू विल गेट वन लाइफ, सो मेक श्योर आप ही अपनी कहानी लिख रहे हैं। स्मॉल डेलिबरेट स्टेप्स जो आप आज लेंगे शेप द पर्सन यू बिकम टुमारो। इसीलिए कोई रिग्रेट नहीं, किसी को ब्लेम नहीं, सीधी सी बात है भाई, हमारी जिंदगी है, इसकी किताब का जो ऑथर है ना वो हम ही होंगे। शुरुआत करते हैं अपने गानों के साथ में और अपनी खबरों के साथ में। जी हाँ, बिल्कुल सिंगापुर की खबर के साथ में शुरुआत करेंगे इन दो गानों के उस पार। लेट मी टेल यू, वन ऑफ दीज सॉन्ग्स इज अ ब्यूटिफुल कामिंग, आपके सोल तक टच करने वाला, और दूसरा ये वाला सौ तरह के। ऑफ कोर्स कमिंग अप नेक्स्ट रेडियो मस्ती 24/7। आई टेक अ शॉर्ट ब्रेक, जरा चाय वाय बना के लाती हूँ, और आप जो है ना सेटल हुए हो जाइए और अपने आने वाले दिन को जरा प्लान कर लीजिए मेरे साथ साथ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, रेडियो मस्ती 24/7, सिंगापुर वन एंड ओनली हिंदी रेडियो स्टेशन। जी हाँ, बिल्कुल आपके साथ रेणुका।

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल व्हाट्सएप टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।

स्वागत है आपका रेडियो मसी 24/7 पर। रेणुका विद यू, 100 तरह की खबरें लेकर आई हूं आपके लिए। जी हां, बिल्कुल सही कहा अभी इस गाने ने। और अब पहले, जैसा कि आप जानते हैं, शुरुआत हम हमेशा करते हैं सिंगापुर से। तो सिंगापुर की पहली खबर कुछ ऐसी है कि हार्बर फ्रंट सेंटर, जी हां, बंद हो रहा है। सुबह का असली वेक अप कॉल, द मॉर्निंग शो विद रेडियो मस्ती 24/7। ऐसी बनती है ना खबरें कि ये चीज बंद हो रही है और उसके बाद नीचे लिखा होता है 70 मीटर दूर रिलोकेट हो रही है। Well, I'm talking about the post जो कि जून 19th को शॉपिंग मॉल ने अनाउंस किया था, हार्बर फ्रंट सेंटर ने, कि भाई ये तो बंद होने वाला है जुलाई 27 से। और ये जो सिंगापुर क्रूज सेंटर है ना, इसको रिलोकेट किया जा रहा है 5 हार्बर फ्रंट एवेन्यू में विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 15th। और ये जो नई जगह है, इट इज हार्डली 70 मीटर्स अवे फ्रॉम, जी हाँ, जहाँ वो अभी है। बाताम फास्ट फेरी जो है वो है पहला ऑपरेटर टू स्टार्ट ऑपरेशन फ्रॉम द न्यू टर्मिनल ऑन जुलाई 7th विद ऑल अदर फेरी operators and cruise operations to follow suit from July 15th. कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे टू द फेरी routes, destinations या फिर scheduling as a result of the move. ये बताया सिंगापुर क्रूज सेंटर ने इसी वीकेंड पर। साथ ही साथ पर इंटरनेशनल टर्मिनल ये जो है अभी इट हैज बीन ऑपरेटिंग फ्रॉम हार्बर फ्रंट सेंटर, मैं आपको बताना चाहूंगी, 1992 से। और फेरी सर्विसेज यहां से जाती हैं इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस पर, इंक्लूडिंग बाताम सेंटर, हार्बर बे, सेकुपांग, तंजुंग बलाई, कारिमुन, गोल्ड कोस्ट एंड निरूप आइलैंड, एज वेल एज इंटरनेशनल क्रूज ऑपरेशंस, सारे के सारे यूजुअल ऑपरेट करेंगे। The ferry and cruise berth locations also remain unchanged. Harbour Front Centre का closure सबसे पहले announce किया गया था last year October में by the owner and real estate firm Mapletree Investments, although no date was specified then other than it was slated for the second half of 2026. तो तैयार हो जाइए इस relocation के लिए and of course नई जगह से काम करने के लिए। Radio Masti 24/7 पर छोटा सा break coming up with this gana. After the other gana which I'm going to play first from Goryeo ki Rasleela, Ram Leela. Sunte hain saath saath Radio Masi 24/7 par. Awaaz zarur bhari hai par 2-3 cups ke baad theek ho jayegi coffee ke. Good morning.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: वेलकम बैक। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि इम्तियाज अली की जो फिल्म है मैं वापस आऊंगा। वेल, जब मैंने देखी तो मुझे लगा मैं तो वापस नहीं जाऊंगा देखने के लिए। राइट, रेडियो मस्ती 24/7, दिस इज रेणुका विद यू, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह का असली वेक अप कॉल, द मॉर्निंग शो। ऑलमोस्ट 7:30 हो रहे हैं यहाँ पर रेडियो मसी 24/7 के स्टूडियो से। रेणुका आपके साथ जुड़ी है, जी हाँ, और रहूंगी मैं आपके साथ पूरे 10 बजे तक। फिलहाल के लिए इस घंटे की बॉलीवुड की खबर आपको देना चाहूंगी। फिल्म मेकर इम्तियाज अली, जी हाँ, उन्होंने धन्यवाद कहा है। ही हैज एक्सप्रेस्ड ग्रेटिट्यूड टू एग्जिबिटर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड थिएटर चेन्स फॉर बैकिंग हिज लेटेस्ट रिलीज मैं वापस आऊंगा, जहां पर विटनेस किए हैं स्टेडी राइज इन कलेक्शंस। वेल, ओपनिंग जरा ढीली ढाली रही थी, जी हाँ, 12 जून को जब ये फिल्म रिलीज हुई थी ऐसा लग रहा था कि मैसिव ओपनिंग नहीं है, लेकिन हाल ही में क्या देखा जा रहा है कि धीरे धीरे एज द वर्ड इज स्प्रेडिंग, ऑडियंस की पॉजिटिव फीडबैक इज स्प्रेडिंग, तो फिर इंक्रीज हो रही है स्क्रीनिंग्स अक्रॉस सेवरल सर्किट्स। हाल ही में इम्तियाज अली ने एक अप्रिसिएशन मैसेज शेयर किया अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स एग्जिबिटर्स के लिए और थैंक यू कहा टू द सिनेमा ओनर्स एंड इंडस्ट्री पार्टनर्स फॉर सपोर्टिंग द फिल्म्स थिएट्रिकल रन एंड हेल्पिंग इट रीच अ वाइडर ऑडियंस। मैं वापस आऊंगा थिएटर्स में, जी हाँ, अच्छा फीडबैक मिले तो बहुत सारे लोग उसको और ज्यादा शोज लगाना चाहते हैं और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, विच इज एन अमेजिंग थिंग। सो दिस ग्रोथ विच इज स्टेडी थ्रू द वीक, जेन्युइन सस्टेन्ड ऑडियंस इंटरेस्ट रादर देन जस्ट अ फ्रंट लोडेड ओपनिंग। यही चीज, एग्जैक्टली यही चीज तो मुझे लगता है कि एक बार OTT पर जब आएगी तो आई वुड रियली लाइक टू वॉच इट आराम से देखकर, क्योंकि उस दिन जो अंकल मेरे लेफ्ट पे बैठे थे ना, आई टेल यू, ही केप्ट हैविंग दैट पॉपकॉर्न एंड देन वेंट स्लूप स्लूप फ्रॉम द ग्लास जिसमें सिर्फ बर्फ रह गई थी। यू नो, वन ऑफ दोस पीपल। कबीरा कमिंग अप विद वॉक्स की आवाज में रेडियो मस्ती 24/7 सुनते साथ साथ गुड मॉर्निंग।
1: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.

0: शो वी टॉकिंग अबाउट जापान और वहां के कैबिनेट की रेटिंग.
1: सीरियस हेडलाइंस With a not so serious vibe, only on the morning show on Radio Masthi.
0: जापान के बारे में बात करें तो काफी परेशानी से गुजर रहा है देश इस समय. There is resource poverty over, of course, the economic fallout from the Middle East conflict. और इसी सिचुएशन के चलते द अप्रूवल रेट फॉर जापानीज प्राइम मिनिस्टर सनाए ताकाइची कैबिनेट इट हैज ड्रॉप टू 55.8%. ये है लोएस्ट पॉइंट सिंस शी टुक ऑफिस इन अक्टूबर 2025. वेल हाल ही में इस वीकेंड पर टेलीफोन सर्वे हुआ जो कि तब किया गया जब यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान हैड ऑलरेडी रीच्ड अ प्रिलिमिनरी पीस डील जिसके अंतर्गत तेहरान रीओपन कर रहा है द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. 54.7% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स ने ये कहा कि कोई जरूरत नहीं है टू सेंड द जापानीज सेल्फ डिफेंसेस फोर्सेस टू द की वाटरवे टू इंश्योर द सेफ पैसेज ऑफ कमर्शियल वेसल्स और 36.6% ने कहा भेज देते हैं. हाउसहोल्ड इस समय काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, प्राइसेस बहुत ही ज्यादा हो चुके हैं इस देश में और लार्जेस्ट शेयर ऑफ रिस्पोंडेंट्स ने ये कहा दैट दे वुड सपोर्ट लोअरिंग द कंजम्पशन टैक्स रेट ऑन फूड एंड बेवरेजेस जो इस समय 8% है, अगर उसको 1% कर दिया जाए तो शायद कुछ फायदा हो सकता है. रेडियो मस्ती 24/7 पर हम बताना चाहेंगे कि द रूलिंग कोएलिशन ऑफ ताकाइची'स लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एंड द जापान इनोवेशन पार्टी प्लेज टू फ्रीज द 8% कंजम्पशन टैक्स फॉर 2 years ड्यूरिंग द फेब जनरल इलेक्शन कैंपेन एज अ मेजर टू काउंटर इन्फ्लेशन. But 8% plan for 2 years starting April 2027 has recently been proposed by the LDP's tax policy chief at a meeting of the cross-party National Council on Taxation and Social Security. कह रहे हैं कि फटाफट इसको कम कर दीजिए, बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, बहुत ज्यादा महंगाई हो रही है. रेडियो मसी 24/7 पर अगला गाना सुनते साथ साथ एंड ऑफ कोर्स आई विल सी यू फॉर मोर न्यूज अक्रॉस दीज सॉन्ग्स. गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज रेणुका.

और एक नजर डालेंगे इस समय पड़ोसी देश पर। जी हाँ, मलेशिया की बात कर रही हूँ मैं। मलेशिया से खबर कुछ ऐसी आई है कि रशिया ने अश्योर किया है मलेशिया को ऑफ अ सप्लाई ऑफ ऑयल, गैस एंड डीजल फॉर एटलीस्ट द नेक्स्ट 20 ईयर्स। सीरियस हेडलाइंस विद अ नॉट सो सीरियस वाइब। रेडियो मस्ती 24/7 पर। जी हाँ बिल्कुल, सीरियस हेडलाइंस एंड नॉट सो सीरियस वाइब। लेकिन आई मेक श्योर कि आपके पास सारी खबरें हों जो कि जरूरी है आपके आगे जाके इंटेलिजेंट बनने के लिए। ऑलराइट, जस्ट टू इम्प्रेस द वर्ल्ड एंड ऑफ कोर्स फॉर योरसेल्फ। तो इस समय जो मैंने आपको बताया, बिल्कुल सही सुना आपने कि रशिया ने शोर किया है मलेशिया को कि भाई अगले 20 साल तक आपको कोई कमी नहीं रहेगी ऑयल, गैस और डीजल की। प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने कहा इसी वीकेंड पर आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम विजिट्स टू रशिया एंड तुर्कमेनिस्तान। President Putin, in Prime Minister's own words, President Putin gave assurances through a long-term arrangement that Malaysia's supply of oil, gas and diesel will remain secure for at least the next 20 years. ये बात हो रही थी इंडस्ट्रियल पार्क पिनांग की ओपनिंग के टाइम पर। साथ ही साथ में प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने यह भी कहा दैट दिस इज मेड पॉसिबल थ्रू द फ्रेंडशिप बिटवीन आवर कंट्रीज। अनवर एंड फेलो साउथ ईस्ट एशियन लीडर्स वर इन कजान रशिया फॉर द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दैट इज आसियान रशिया कमेमोरेटिव समिट। ये था पिछले ही हफ्ते। Anwar also met Putin on the sidelines of the summit to discuss energy security, oil supply cooperation, emerging technologies and other issues. Since United States or Israel ka launch hua tha strikes on Iran on Feb 28, Asia ka supply of oil and gas has obviously, jo ki ship hota hai Strait of Hormuz se, kafi impact hua tha. Aur is samay in dono deshon ke beech mein is baat hone ke baad mein Malaysia ke liye kafi acha is time feeling hai. Philippines, Malaysia, Indonesia, Vietnam and Myanmar were among countries that showed interest in buying Russian oil and gas. Well, aage ki khabrein obviously main aapko deti rahungi, lekin filhal ke liye ek chota sa break yahan par. Coming up is the next track, which is beautiful. Muskurane ki wajah tum. बिल्कुल बिल्कुल अरिजीत सिंह, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं ही वजह हूँ इन सब के मुस्कुराने की आज सुबह। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई विल सी यू नेक्स्ट आवर।

तो भाई जैसे जैसे मंडे आपका खून चूसने के लिए तैयार होता है, यहाँ पर रेडियो मस्ती 24/7 पर रेणु का काम होता है आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालना एंड टू फील गुड अबाउट अ ब्रांड न्यू वीक दैट इज जस्ट ओपनिंग इट्स आईज इन फ्रंट ऑफ यू. गुड मॉर्निंग. सीरियस हेडलाइंस विद अ नॉट सो सीरियस वाइब ओनली ऑन द मॉर्निंग शो ऑन रेडियो. देखो भाई